0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 5:04 हो गए। प्यारा सा बुधवार का दिन यानी कि वेंसडे 29 जुलाई आ गई 2026 की, और आज की सुबह कुछ खास है। आज है गुरु पूर्णिमा। जी, जीवन में अगर किसी रिश्ते को सबसे बड़ा सम्मान मिला है तो वह है गुरु का, यानी कि टीचर का। गुरु सिर्फ स्कूल या कॉलेज में या पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं, माता पिता, भाई बहन या वह हर इंसान भी हो सकता है जिसने हमें जीवन में एक प्यारी सी अच्छी सी सीख दी हो। आज उन सभी गुरुओं को दिल से प्रणाम करते हैं और उन सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जो आज गुरु पूर्णिमा अपने अपने घरों में मना रहे हैं। अगर जिनको इस बारे में नहीं पता, बहुत छोटे छोटे, तो अपने माता पिता के पास जाइए जो आपके सबसे पहले गुरु बने, उनको प्यार दीजिए, उनको पुचकारिए। उनके पाँव छू सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपके साथ पूनम। इस पुराने प्रोग्राम यानी कि सुनहरे सपनों को शुरू करने के लिए आज की जिम्मेदारी सुबह की मुझे दी गई है। ओनली RM2 रेडियो मस्ती पर एंजॉय कीजिए अपना प्रोग्राम।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:13 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। कहते हैं कि एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब से किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने महान गायक हैं, आप किसे सुनना पसंद करते हैं? रफ़ी साहब मुस्कुराकर बोले, दुनिया भले ही मुझे सुनती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ मन्ना डे साहब को सुनता हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ मेरे दिल को सुकून देती है। यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी विनम्रता। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499 1294 पर और अपने दिल की बात मुझे बता सकते हैं। मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त यहां पर पूनम।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:23 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। कई बार दवा की नहीं ज़रूरत होती, कुछ अच्छे पलों की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे गीत जो हमारे दिन को बहुत अच्छा बना देते हैं, हमारे साथी बन जाते हैं। और ऐसे पुराने पुराने गाने चाहे 50s के हों, 60s के हों, 70s, 80s, 90s और उसके बाद लगातार चलते आ रहे हैं। बॉलीवुड ने हर मूड के लिए प्यारे प्यारे से गाने बनाए हुए हैं, चाहे वो सुबह की बात हो, अर्ली मॉर्निंग हो जैसे अभी हम कर रहे हैं, फिर दोपहर की बात चलती है, फिर लेटेस्ट गानों की बात होती है, फिर रात तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हम भी आपको यही कहते हैं, ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहेगा पर थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिएगा। 5 मिनट 10 मिनट चाहे मेडिटेशन कीजिए, चाहे कुछ अच्छा खाइए, चाहे कुछ शॉपिंग करके आइए, जैसे कुछ जो आपको लगता है जो आपके दिल को सुकून देता है वो काम ज़रूर कीजिए। ये ना हो कि आप दूसरों को देखते रहें और अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर दें। हम तो आपको यही बोलेंगे, बस मिरर के सामने जाइए, जो आपको मिरर के सामने दिख रहा है उसको बड़ी सी स्माइल दीजिए और कहिए गुड मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। कहते हैं कि भाई मॉर्निंग अगर प्यारी प्यारी हंसते खेलते वाली शुरू हो तो पूरा दिन भी बड़ा अच्छा और प्यारा सा निकलता है। तो अगर आपने अभी तक अपने घर की खिड़कियां नहीं खोली हैं तो खोल लो, और जिनके अलार्म बजते हुए बहुत देर से बज रहे हैं उसको थोड़ा बंद करो, थोड़ा सा उठो, थोड़ी सी बॉडी को स्ट्रेच करो, और अगर बेड पर ही थोड़ा सा योगा कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी सी गर्दन को इधर उधर हिलाओ, ऊपर नीचे करो, क्योंकि गर्दन अगर थोड़ी सी रिलैक्स होती है तो हेडेक्स नहीं होते, आपको नोशिया नहीं होता, आपको लगता है कि भाई पूरा दिन बड़ा ही रिलैक्स होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भार तो इसी हमारे दिमाग ने उठाया होता है, पूरे दिन की टेंशनें और पूरे दिन के काम। तो चलिए भाई इसको आराम थोड़ा सा देते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग प्यारे प्यारे गानों के साथ। तो दो तीन मैसेजेस भी साथ साथ ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ जयशन जी जुड़े हुए हैं और अपने पूरे परिवार को गुड मॉर्निंग के साथ में बेस्ट विशेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जयशन जी, आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ, और अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत 100% आप मुझे पता है फोकस रखते हैं, बट फिर भी अगर हमारी तरफ से और उसमें प्यार डाल दें, क्योंकि आपका काम ही कुछ ऐसा है पेशेंस को देखना, तो बस प्यार देते रहिए, इंजॉय करते रहिए। साथ में सूरज शर्मा साजदा जी भी जुड़े हुए हैं, अपने परिवार को बेस्ट विशेज दे रहे हैं और सभी लिसनर्स का कह रहे हैं ख्याल रखिए। अब्दुल जी और सायरा बानो जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी जो लिसनर्स हैं जो जल्दी घर से निकलते हैं उन सबके लिए इतना ही कह रहे हैं कि भाई अपना ख्याल रखिएगा। और नसरीन को स्पेशली विश कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम तो बहुत जल्दी निकलती हो इसलिए तुम्हारा ख्याल रहता है। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। संगीता जी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं प्लीज़ मेरे लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा। पर मैं तो कहूँगी संगीता जी आपके लिए मैं क्या गाना चलाऊँ, आपके नाम में ही संगीत है और हमें तो आपको ही सुनना होता है, तो बस आप ही को आप ही के लिए सारे गाने चलते हैं। तो इन्जॉय कीजिए अपने गानों को। साथ में इस समय हमारा साथ दे रहे हैं टोनी जी, और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश तो नहीं की पर एक प्यारा सा मैसेज लिखा है जो मैंने अपने दिल से उसको समझा। और चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आप भेजते हैं, थैंक यू सो मच। सूरज सुया बिहारी जी और लालदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और दोनों काम कर रहे हैं खेतों में, और बस यही कह रहे हैं कि हमेशा सब खुश रहें, यही हमारी तमन्ना है। क्या बात

0: दिस रोज राजन मोनिका पूनम श्रिया उमेश अर्जी जो कि कैथरबोन से जुड़े हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, ललित जी जो यूएसए से साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सभी का, इन्जॉय कीजिए इस गाने को।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:45 हो चुके हैं। सुप्रभात दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूनम। हर सुबह कुछ नया लेकर आती है, तो आइए जानते हैं आज आपकी राशि की सौर इशारा कर रही है। सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि।
1: सुबह से ही कोई नई सोच मन में जगह बना सकते हैं। रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू होने के संकेत है। लकी कलर बनेगा आज आपका ब्लैक। लकी नंबर है 4।
2: वृषभ राशि।
1: घर का माहौल पहले से ज्यादा सुकून भरा महसूस होगा। किसी पुराने वादे को पूरा करने का मौका मिल सकता है। आज छोटी सी खुशी भी दिल जीत सकती है। लकी कलर बनेगा ग्रीन। लकी नंबर है 8।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: अचानक मिली कोई जानकारी आपके काम आ सकती है। नई पहचान आके चलकर फायदेमंद साबित होगी। आज आपकी हाजिर जवाब भी सबको पसंद आएगी। लकी कलर बनेगा येलो। लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज किसी अपने की बात दिल को छू जाएगी। घर की कोई छोटी योजना पूरी हो सकती है। मन में चल रही उलझन धीरे धीरे कम हो सकती है। लकी कलर बनेगा पर्ल व्हाइट। लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपकी मौजूदगी ही आपकी पहचान बनेगी। लोग आपकी राय को महत्व देंगे। कोई नया अवसर अचानक सामने आ सकता है। दिन को पूरे उत्साह के साथ अपनाइए। लकी कलर है ग्रीन कलर। लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज हर काम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पुरानी मेहनत का असर दिखाई देने वाला है। दिन का जो अंत

0: है संतोष भरा होगा। लकी कलर बनेगा मिंट ग्रीन। लकी नंबर है 6।
1: लीब्रा तुला राशि।
0: आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बातचीत हो सकती है। दिल खोलकर की गई बातें रिश्तों को और मजबूत करेगी। किसी निमंत्रण की खुशी मिल सकती है। आज अपना पन आपकी बड़ी ताकत बनेगा। लकी कलर बनेगा पिंक। लकी नंबर है 9।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाएगी। अधूरा काम पूरा करने का सही समय है। कोई नई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए। लकी कलर है बर्गंडी। लकी नंबर है 7।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज रास्ते बदलेंगे और नज़ारे भी बदलेंगे। नई जगह पर या नए लोगों से मिलना होगा। अच्छी सीखने को कुछ मिलने वाला है। दिल की उत्सुकता बनाए रखिए। नई चीज़ें आपको बहुत अच्छी जगह जोड़ने वाली हैं। लकी कलर है वॉयलेट वाइट। लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज आपके काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। लंबे समय से चली आ रही जो कोशिश थी आज वो रंग दिखा सकती है। बड़ों की सलाह काम आएगी। आज एक कदम आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। लकी कलर है ग्रे। लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज आपका अलग अंदाज लोगों को ध्यान खींचेगा। रचनात्मक कोई सोच आपको राह दिखा सकती है। अचानक मिला मौका हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। दिन उम्मीद से बेहतर रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सा हंसना और मुस्कुराना है। लकी कलर है ब्लू। लकी नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज दिल किसी अच्छी बात पर खुश हो सकता है। कोई पुरानी याद चेहरे पर आ सकती है या कोई पुराना दोस्त या कोई सखी आपको मिल सकती है। अपने पसंदीदा काम के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन। लकी नंबर है 12। तो ये थे आज के आपके सितारे। एंजॉय कीजिए रेस्ट ऑफ द शो।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से. याचना आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने की दिशा में कल राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को दूसरी पढ़त के लिए पेश किया गया. प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा बजट में घोषित वित्तीय, आर्थिक और सार्वजनिक वित्त से जुड़े कदमों को लागू करना है. फाइनेंस बिल के तहत 26 कानूनों और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल के तहत 58 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है. इन दोनों विधेयकों पर संसदीय बहस शुक्रवार 31 जुलाई से शुरू होगी. पूर्व ब्रह्म बैंक के साथ हुई 80 मिलियन रुपए के धोखाधड़ी के मामले में सुनाई गई सजाओं के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन द्वारा दायर अपील पर 17 मई 2027 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. अभियोजन पक्ष ने इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन द्वारा चंद्र प्रकाश दीप, मोहम्मद सैफुल्लाह मौलाबख्श और शेख मोहम्मद कदाफी जानी को दी गई सजाओं को चुनौती दी है. वहीं इसी मामले में दोषी ठहराए गए धर्मेंद्र मल्लू ने भी अपनी ओर से अपील दायर की. उनकी अपील पर भी उसी दिन सुनवाई होगी. दोषियों पर कई जुर्माने लगाए गए हैं. अपनी अपील में डीपीपी का कहना है कि इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने कथित मास्टरमाइंड की पहचान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है. गुरु पूर्णिमा आज है. गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है. ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है. गुरु ही अपने ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कारों से जीवन को सही दिशा देते हैं. इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हैं. गुरु पूर्णिमा हमें ज्ञान, विनम्रता और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है. और विदेश में जापान में जोरदार

0: भूकंप के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। कुमामोटो इलाके के एक मॉल के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पास के एक कारखाने की चिमनी भी ढह गई जिसके नीचे कई लोग दब गए। अन्य इलाकों में भी कई लोग लापता हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 की मापी गई। भारी माली नुकसान हुआ है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद भी पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश होगी। हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से पूर्व की ओर से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह और आज दोपहर बाद को दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 और अधिकतम 21 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:41 पर, शाम को सूर्यास्त 5:51 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:14 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। कहते हैं ना कि मॉर्निंग सुंदर सुंदर तभी होती है जब थोड़ी सी खिड़की से बाहर झांक के देखें कि अरे सूरज उग गया है। तो मैं तो कहती हूँ अगर आपको दिख गया है तो बस बाहर निकलिए, थोड़ी सी फ्रेश ब्रीथ लीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने गानों को। और आज है जन्मदिन, यस, बॉलीवुड के एक बाबा यानी कि संजय बाबा का, जिनको प्यार से हम संजय बाबा कहते हैं। दिग्विजय अभिनेता सुनील दत्त और सदाबहार अभिनेत्री नरगिस जी के बेटे हैं। संजय दत्त ने अपनी कई फिल्म्स में काम किया और अलग ही पहचान बनाई। कई दमदार किरदारों से दर्शकों का दिल जीता। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी है, उनका अंदाज या उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है कि उनके गाने तो सुनने को बनते ही हैं। और ये प्यारा सा गाना जो कि कहते हैं ना कि मॉर्निंग को सुपरहिट बना देता है, इन्जॉय कीजिए इस गाने को। और हम तो बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं संजय दत्त के बर्थडे पर। और ये जिनका भी आज बर्थडे है उनके लिए भी हम विश करते हैं हमेशा खुश रहें, इन्जॉय करें अपने गानों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ। यह है गाना आप सबके लिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

जिस तरह फूल खुशबू के बगैर बेकार है, जिस तरह चांदनी चांद के बगैर तन्हा है अकेली है, जिस तरह लहरें सागर के बगैर बेमानी है, उसी तरह ख्वाब के बगैर जिंदगी आधी है, अधूरी है। जिंदगी ख्वाबों का एक सिलसिला है, कभी ये ख्वाब कभी वो ख्वाब, और जब एक ख्वाब पूरा हो जाए तो दूसरे ख्वाब की ख्वाहिश। जिंदगी की सांस पर छेड़ी हुई खूबसूरत गजल है ख्वाब, कुछ सुर में कुछ बेसुरे, कुछ खूबसूरत कुछ बदशक्ल। कुछ ख्वाब ऐसे भी हैं जो इंसान इसलिए देखता है क्योंकि वो जानता है वो कभी सच नहीं होंगे, शायद इसलिए उसे ख्वाब कहते हैं। जो पूरा हो गया वो ख्वाब कैसा। मुझे ख्वाबों की आदत है, मैंने भी कुछ ख्वाब देखे हर दिन हर पल, और शायद तमाम उम्र देखता रहूंगा, हमेशा देखता रहूंगा, क्योंकि ख्वाब कभी नहीं टूटते, ख्वाब कभी खत्म नहीं होते। मेरे कुछ ख्वाब

0: थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार।
1: RM2 Radio Musti

0: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 6:30 बजे हैं। सभी को नमस्कार। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने की दिशा में कल राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को दूसरी पढ़त के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। राष्ट्रसभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान विदेश में रह चुके मॉरिशस के नागरिकों को मिलने वाली पेंशन का मुद्दा चर्चा में। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले वर्ष जनवरी से अन्य शर्तों के साथ पेंशन पाने के लिए व्यक्ति को 40 साल की आयु के बाद मॉरिशस में कम से कम 15 वर्ष की कुल अवधि बितानी होगी। राष्ट्रसभा में एक बार फिर ये मुद्दा उठा। सांसद रूपना दुहियाओ के का एक सवाल, मंत्री अनिल बिचू से विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड C12 में स्वच्छता की स्थिति के बारे में पूछा गया। विदेश की खबरों में जापान में आए जोरदार भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां भारी माली नुकसान हुआ। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने की दिशा में कल राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को दूसरी पढ़त के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा बजट में घोषित वित्तीय आर्थिक और सार्वजनिक वित्त से जुड़े कदमों को लागू करना है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: These bills give legislative effect to the reforms that are guided by the four principles that define our approach to nation building. That is responsibility, solidarity, efficacité économique et justice sociale. They are more than a collection of legislative amendments. Together, they provide the legal framework to restore fiscal sustainability, strengthen our institution, modernize our economy, reinforce our social contract, and prepare Mauritius for the challenges of an increasingly uncertain world. The future, Madam Speaker, cannot be secured by postponing difficult decisions. It is built by having the courage to act today. Fiscal consolidation is not an end in itself. It is the means.

0: means by which we restore the strength of the state, preserve confidence in our public finances, and ensure that future generations inherit a country that is resilient, competitive, and able to protect the most vulnerable. As I said in the budget speech, the future depends on what we do in the present. These bills translate that conviction into action. They lay the foundation of a future-ready Mauritius. That is one that is fiscally responsible, economically stronger, socially fairer, and better equipped to seize the opportunities of tomorrow. The reforms, Madam Speaker, which are before this House, demand courage and perseverance. But they are reforms that are taken not for the next election, but for the next generations. With the confidence in our people and faith in our country's future, this government will continue to take the decisions that are necessary to secure lasting prosperity for all Mauritians. Madam Speaker, with these words, I now commend the bill to the House.
1: Thank you.
2: राष्ट्रसभा में कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान विदेश में रह चुके मॉरिशस के नागरिकों को मिलने वाली पेंशन का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले साल जनवरी महीने से अन्य शर्तों के साथ पेंशन पाने के लिए व्यक्ति को 40 साल की आयु के बाद मॉरिशस में कम से कम 15 साल की कुल अवधि तक रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये नया नियम उन लोगों पर लागू नहीं जो वर्तमान प्रणाली के तहत पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस पर और अन्य जानकारियों पर पेश है रिपोर्ट।
3: पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह पर स्टेट एज पेंशन लागू होने के साथ ही इसके लिए जरूरी निवास शर्तों में भी बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सांसद चेतन बाबूलाल के सवाल के जवाब में ये बात कही। अभी विदेश में रहने या काम करने वाला 70 साल से कम उम्र का मॉरिशन नागरिक पेंशन का दावा कर सकता है अगर वह 18 साल की उम्र के बाद कुल मिलाकर कम से कम 12 साल तक मॉरिशस में रहा हो।
0: A person will now become eligible to the state age pension.
3: अब कोई व्यक्ति बुढ़ापे का पेंशन पाने का हकदार तभी होगा जब वो 40 साल की उम्र के बाद मॉरिशस में कुल मिलाकर कम से कम 15 साल रहा हो और पेंशन के लिए आवेदन करने से ठीक पहले के 3 सालों में कुल मिलाकर 12 महीने मॉरिशस में रहा हो। इस बदलाव से ये पक्का होगा कि पेंशन उन लोगों को मिले जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान हमारे देश, हमारे समाज और हमारे टैक्स सिस्टम के विकास में योगदान दिया है, न कि उन लोगों को जिन्होंने अपना पूरा करियर विदेश में काम करते हुए बिताया और अब रिटायरमेंट के लिए मॉरिशस लौटने का फैसला किया है। मैं उन रिटायर्ड हो चुके लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं जो अभी मौजूदा रेजिडेंस नियमों के तहत पेंशन पा रहे हैं। ये बदलाव उन पर लागू नहीं होगा। रेजिडेंस से जुड़ी नई शर्त सिर्फ उन लोगों पर लागू होगी जो पहली जनवरी 2027 या उसके बाद सरकारी वृद्ध पेंशन के लिए आवेदन करेंगे। सांसद बाबूलाल के एक और सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सामना नहीं कर रहा जिसे रुकी हुई या घटती आर्थिक वृद्धि ज्यादा और लगातार बनी रहने वाली महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के तौर पर परिभाषित किया जाता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ऐसे आंकड़े पेश किए जिनसे पता चलता है कि महंगाई उम्मीद से कम रही है, विकास दर 3% है और बेरोजगारी दर 2020 के 9.2% से घटकर 2025 में 5.7% हो गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टकरावों के कारण आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और नौकरियों की सृजन पर नकारात्मक असर पड़ने का वास्तविक जोखिम है। फिर भी पर्यटन और निर्माण क्षेत्रों से सकारात्मक योगदान की उम्मीद है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की चुनौतियों के बावजूद इस साल रेस्टोरेशन सेक्टर में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है और पर्यटकों की संख्या लगभग 1.47 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार हवाई संपर्क बढ़ाने और सीटों की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है। खासकर टर्किश एयरलाइंस की 3 अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ानों और इथियोपियन एयरलाइंस की 3 साप्ताहिक उड़ानों के जरिए जो एमिरेट्स की पहले से चल रही 2 रोजाना उड़ानों के साथ जुड़ेंगी। मैं सभा को ये भी बताना चाहता हूं कि मैं खुद उस कमेटी की अध्यक्षता करूंगा जिसे हमारी हवाई पहुंच नीति की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। जहां तक निर्माण सेक्टर की बात है, इसमें धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। ये सुधार कई बड़ी मूल ढांचा परियोजनाओं जैसे एम्फो मोटोवे

0: रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण आइलैंड कनेक्टर टर्मिनल को दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रिविया डिजोंगी डैम के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे उभरते क्षेत्रों में निजी सेक्टर के बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण होगा। व्यवसाय को आसान बनाने और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रसभा में एक नया बिल पेश किया जाएगा। इसे स्थानीय और विदेशी ठेकेदारों के लिए प्रोडक्टिव निवेश के और मौके बनेंगे, खासकर रिन्यूएबल ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले बजट में मूलभूत उत्पादों पर सब्सिडी देने के लिए प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए लगाए गए थे और ये सब्सिडी अन्य उत्पादों तक भी बढ़ाई गई थी। सांसद जमन के सवाल के जवाब में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि 1 जनवरी 2014 से 27 जुलाई 2026 के बीच ड्रग तस्करी के 18 मामलों में 23 पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। कुछ अफसर 15 साल तक कैद की सजा काट रहे हैं, जबकि अन्य मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं। सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने की नीति की समीक्षा करने जा रही है जिन्हें नौकरी से सस्पेंड किया गया है। सोशल मीडिया पर बोबासा कैदखाने के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर वायरल हुई एक वीडियो और कुछ तस्वीरों को लेकर सांसद रामदास के सवाल रहे। ये तस्वीरें जेल में जब्त किए गए एक मोबाइल फोन से मिली थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और 3 कैदियों को अन्य कैदखानों में ट्रांसफर किया गया है। वीडियो और तस्वीरों में दिख रहे 10 लोगों की पहचान बोबासा कैदखाने के कैदियों के तौर पर की गई है। 20 जुलाई 2026 को पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई और सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जांच शुरू की गई। मॉरिशस प्रिजन सर्विस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन को पुलिस ने जांच के मकसद से अपने कब्जे में रखा है। पुलिस की आईटी यूनिट अभी इस डिवाइस की फोरेंसिक जांच कर रही है। रोड्रिग्स में तैनात पुलिस अफसरों को इंटरपोल की तरफ से प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री सांसद फ्रांसवा के सवाल का जवाब दे रहे थे। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अब तक रोड्रिग्स इंटरपोल के ग्लोबल सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा नहीं था और उसे पोर्ट लुइस में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के जरिए बातचीत करनी पड़ती थी। अगस्त 2025 से रोड्रिग्स को इंटरपोल के डेटाबेस का सीधा और 24 घंटे एक्सेस मिल रहा है और वो जरूरी जानकारी तेजी से शेयर कर सकता है। सांसद इतवारिया के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि मॉरिशस ने मित्र देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ समुद्री सुरक्षा और डिफेंस से जुड़े 12 समझौते तय किए हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा तथा देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा शामिल है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इनमें से कोई भी समझौता उस जोन में तेल, गैस या किसी अन्य प्राकृतिक संसाधन की खोज से संबंधित नहीं है।
1: राष्ट्रसभा में एक बार फिर ये मुद्दा उठा। सांसद भूपनाथ दोगियाओ ने कल राष्ट्रसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू से विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड C12 में स्वच्छता की स्थिति, विशेष रूप से कबूतरों और चूहों की मौजूदगी को लेकर सवाल किया। स्वास्थ्य मंत्री का जवाब का एक अंश पेश है।
2: During one routine operation, one dead rat was recovered in the yard adjoining the ward.
3: एक रूटीन कार्रवाई के दौरान वार्ड के बगल वाले प्रांगण में एक मरा हुआ चूहा मिला, लेकिन वार्ड के अंदर चूहों को लेकर कोई सबूत नहीं। वार्ड मैनेजर के अनुसार खुली खिड़की से कबूतर अंदर आते हैं, लेकिन वार्ड 12 में कोई घोंसला नहीं है। सवाल के पार्ट बी के तहत स्वच्छता और जनता, मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की ओर से जरूरी कदम उठाए जाते हैं। इन कदमों में जांच, साफ सफाई, कूड़े का सही संचालन, निगरानी तथा चूहों के लिए ग्लू ट्रैप और जहर डाला जाता है। चिड़िया और चूहे आदि की संख्या कम करने के लिए भी कदम निर्धारित हैं। दरवाजे बंद करने वाले खुद ही बंद होने वाले डिवाइस लगवाए जाएंगे। पक्षियों को भगाने के लिए वार्ड C12 की छत पर बर्ड डिटोनेट डिवाइसेस और आसपास की इमारतों में भी ये डिवाइसेस लगाए जाएंगे।
2: एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बर्ड डिटोनेट डिवाइसेस इंक्लूडिंग रिफ्लेक्टिव डिटोनेट्स और बर्ड ब्रीजेस ऑन द रूफ ऑफ वार्ड C12 एंड नियरबाय बिल्डिंग्स।
1: पूर्व ब्रह्मा बैंक के साथ हुई 80 मिलियन रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन द्वारा दायर अपील पर 17 मई 2027 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

0: होगी। अभियोजन पक्ष ने इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन द्वारा चंद्र प्रकाश दीप, मोहम्मद सैफुल्ला मौलाबख्श और शेख मोहम्मद कदाफी जानी को दी गई सजा को चुनौती दी है। वहीं इसी मामले में दोषी ठहराए गए धर्मेंद्र मल्लू ने भी अपनी ओर से अपील दायर की। अपनी अपील पर भी उसी दिन न सुनवाई होगी। उनकी अपील पर दोषियों पर कई जुर्माने लगाए गए थे। अपनी अपील में डीपीपी का कहना है कि इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने कथित मास्टरमाइंड की पहचान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, जबकि आरोपियों को की पूरी धोखाधड़ी के मामले में भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। SBM Holdings Limited द्वारा जारी कम्युनिके में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सूचित किया गया है कि एक आंतरिक जांच के चलते ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हाउल क्लोद निकोला हुफले को के खिलाफ अनुशासन को लेकर कार्रवाई चलाई जाएगी और इसी दिशा में उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। इस बीच ग्रुप के डिप्टी CEO मुनि सिंह जना नायकेनी को एक्टिंग CEO बनाया गया है। हाल ही में प्रसारित की गई जानकारी के बाद फनपर्क का कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देने के लिए उसने एक कम्युनिके जारी किया। उद्घाटन से पहले उसका कहना है कि सुरक्षा से संबंधित सभी मंजूरियां प्राप्त कर ली गई थी, जिनमें अग्निशमन से जुड़ी मंजूरियां भी शामिल हैं। पार्क के मौजूदा सभी राइडर्स और राइड्स और उपकरणों का निरीक्षण एक अधिकृत मॉरिशन इंजीनियर द्वारा किया गया है और उन्हें यूरोपीय मानक EN13814 के अनुरूप प्रमाणित किया गया, जो मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। मनोरंजन का बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से फनपार्क ने पार्क की मूल योजना में कुछ बदलाव किए हैं। इसी संदर्भ में इस एक नए बदलावों को शामिल करने और सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट में संशोधन के लिए एक आवेदन किया गया है। किसी भी समय उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। संशोधन परमिट जारी होने तक फनपार्क ने सक्षम अधिकारियों के सहयोग से अपनी गतिविधियों को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। और आज दिन है सभी गुरु को समर्पित गुरु पूर्णिमा। भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु ही अपने ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कारों से जीवन को सही दिशा देते हैं। इस पर ये रिपोर्ट पेश है।
1: गुरु
2: भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। कहा जाता है कि माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसी भाव को दर्शाते हुए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान हैं। वे ही परम सत्य का ज्ञान कराते हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का संबंध महान ऋषि देवव्यास से भी जुड़ा हुआ है। महर्षि देवव्यास ने वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। देवव्यास ने ज्ञान की उस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसने आने वाली पीढ़ियों को जीवन के मूल्य और सत्य का मार्ग दिखाया। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, नैतिक मूल्य और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी पैदा करते हैं। माता पिता, शिक्षक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या कोई भी व्यक्ति जो हमें सही राह दिखाता है, वे हमारे जीवन का गुरु बन सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। संत कबीर दास का ये प्रसिद्ध दोहा गुरु की महानता को बताता है।
3: गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए।
2: यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों

0: तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। गुरु पूर्णिमा हमें अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देती है। ये पर्व ज्ञान, अच्छे संस्कार और आत्मविकास का संदेश देता है। गुरु का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही व्यक्ति को सफलता और श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। सभी गुरुओं को शत शत प्रणाम।
1: स्कॉटलैंड में ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में अभी तक हमारे हमवतन कई प्रतियोगिताओं में उतर चुके हैं और उनका प्रयास जारी है। आज पैरा एथलेटिक्स में नोएमी अल्फोंस 1500 मीटर की रेस में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करेगी। ये प्रतियोगिता आज रात के लिए निर्धारित है। स्पोर्ट्स 11 पर आज रात 10 बजे आप देख पाएंगे। साथ में 800 मीटर की दौड़ में सेमीफाइनल्स में भी मॉर्शन राशेल क्लब फैंस्टीन देश के लिए मैदान में उतरेगी। विदेश की खबरों में जापान में जोरदार भूकंप के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। कुमामोटो इलाके के एक मॉल के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पास के एक कारखाने की चिमनी भी दह गई, जिसके नीचे कई लोग दब गए। अन्य इलाकों में भी कई लोग लापता हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 की मापी गई। जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे सक्रिय बादलों का असर है, इसके अलावा हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, कोहरा छाया रहेगा और हल्की बारिश का भी अनुमान है, जिस और दोपहर बाद तथा रात तक को पश्चिमी और पूर्वी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर आज सुबह और दोपहर बाद को। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18, अधिकतम 21 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 और अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:41 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:51 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर कादर का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रिवियर स्ट्रीट काजेन क्यूपिप में रिवियर जोसेफ रिवियर स्ट्रीट ले काजेन क्यूपिप में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुबराज नायरू सुकापादू, श्री सुबराज नायरू सुकापादू जो देवराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे सुबराज नायरू जूनियर सुकापादू के मकान जोसेफ रिवियर स्ट्रीट ले काजेन क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शुमे गोहिनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेथ 2:30 PM रॉयल रोड क्लेमोसिया में, रॉयल रोड क्लेमोसिया में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पालिता बुधू, श्रीमती पालिता बुधू पैदाशी नाम आहक और जो फिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी। मोसलमो सुहावन काहोलिन में, मोसलमो सुहावन काहोलिन में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अमरावती नेपल, श्रीमती अमरावती नेपल पैदाशी नाम बेचू और जो हेमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान मोसलमो सुहावन काहोलिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावों चुया की श्मशान

0: भूमि ले जाई जाएगी क्रिमशन टुडे एट 2 पीएम रॉयल रोड बोबोआ सेंट पियर में रॉयल रोड बोबोआ सेंट पियर में 87 साल के 87 इयर्स ओल्ड के श्री उमाशंकर ओजगोबी श्री उमाशंकर ओजगोबी जो मिश्र ज्ञान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी दोपहर 3 बजे उनके बेटे नवीन ओजगोबी के मकान रॉयल रोड बोबोआ सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाक मुस्तांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM रॉयल रोड मेलहोज में 39 साल के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री यशविन मनराज जो एशले तोलिए के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी दोपहर 1:30 बजे उनकी माँ लता मनराज के मकान रारोड मेलहोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लांश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM रॉयल रोड क्लावेट सेबास्टोपोल में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुर्पति मुसाना पेदाशी नाम चोकोरी और जो बाल्की के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी सुपहर 3 बजे उनके मकान रॉयल रोड क्लावेट सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लावेट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM मोसलमा पोलॉजिए में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वर प्रसाद दुकिया जो बिज्यानन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और टैक्सी चालक थे उनकी मृत्यु हो गई है उनके अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनकी बेटी प्रीति मेगन के मकान मोसलमा पोलॉजिए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चिंतामणि ओबिलक की मृत्यु हो गई है अर्थी सुबह 10 बजे उनकी बेटी शारदा सिबनत के मकान कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10 AM एनफील्ड रोड श्वाजी में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री आत्माराम लक्ष्मण जो रोहिणी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी सुबह 9 बजे उनके बेटे श्री राम लक्ष्मण के मकान एनफील्ड रोड श्वाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौत तैबैलोंभ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 9 AM एस एस आर रोड सेंट फ्रांसवा कप मालोहोय में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री रणधीर मगौ जो दिवंगत नारायण दत्त मगौ के सुपुत्र थे और जो रणधीर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी दिन के 11 बजे उनकी माँ मंजू मगौ के मकान SSR रोड सेंट फ्रांसवा कप मालोहोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 AM रुजिकेल मोसलमा बाटिस्ट ओकुलेमे 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आमोदों कारोपुनेन पेदाशी नाम सुकुरमनी और जो मीना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी दिन के 1 बजे उनके मकान रुजिकेल मोसलमा बाटिस्ट ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

आज की सुबह का साथ यहीं तक था, मैं थी आपके साथ पूनम। अपना दिन को शानदार बिताइएगा, थोड़ी देर में आप जुड़ पाएंगे मॉर्निंग बीट में। अपने दिन को शुरुआत कीजिए स्माइल से।

0: Oleta Swingers.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. सुबह के 7:08 हुए हैं. हम साथ साथ हैं और आज है 29th of July. गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल. कैसे हो आप लोग? कहाँ पे हो आप लोग? कहाँ पहुँचे? काम पर जाने के लिए तैयारियाँ हो रही हैं. काम पर जाने के लिए आप निकल भी गए होंगे रोड पे. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू फॉर मेकिंग अस योर हम सफ़र. यानी कि आप जो सफ़र कर रहे हैं उसमें हम भी साथ साथ चल रहे हैं. वैसे आज मॉर्निंग का व्यू इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि हम क्या बोले. ऐसा लग रहा है जैसे सोना बिखरा हुआ आसमान पे. आपने नोटिस की? चलो भाई, हमारा तो यही काम है कि हम इसी से खुश हो जाते हैं नज़ारों को देखते हुए और बस कुछ प्यारे प्यारे गाने सुनते हुए. पूनम का साथ था और अब मेरी बारी आ गई है. हमारे पास आपके लिए गेम्स हैं और आपको बताएं, जब हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा जो गेम होता है तो उसमें आपको खुश करने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते. तो चलिए, थोड़ी देर में हम आपके लिए प्रोमो चलाएंगे, आप उसको सुनेंगे और फिर उसके बाद आपको हमें कॉल करना होगा और हमें बताना होगा कि भाई वो तीन टैगलाइन कौन से हैं. फिलहाल एक गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद हम डेफिनेटली यहाँ पर गीतों के साथ आगे बढ़ेंगे.

0: un petit malin chez là. Et Formelaine, nous gagnons beaucoup plus.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: चलो जी घड़ी बिलाते चलो 7:12 हुए हैं चलती हैं क्या 9:12 जी नहीं मैं रहूंगी 7 से 9 और 9 से 12 कोई और होगा तो यहां पर मैं विदिता आपके साथ यहां एक और गेम के साथ आई हूं जैसा कि मैं रोज लेकर आती हूं तो शुरुआत हम गेम के साथ ही करेंगे एंड जैसा आप जानते हैं कि यहां पर हम आपको एक प्रोमो सुनाते हैं फिर उसके बाद आपको वो जो 3 टैगलाइन है उसको आपको पकड़ना पड़ता है यानी कि मैं आपके लिए पहले तो एक प्रोमो चलाऊंगी आप प्यार से उसको सुनेंगे फिर वो जो 3 टैगलाइंस है उसमें उसको आप मुझे फोन करके बताएंगे कि वो 3 टैगलाइंस कौन से हैं जी हाँ और

0: बहुत ही आसान है, आपको फॉर्मलैंड की तरफ से मिल सकता है एक गुडी बैग जिसमें बहुत सारी गुडीज है। तो आपको मुझे बताना है, मैं उसको ट्रांसलेट करती हूँ आपके लिए। उस टैगलाइंस में होगा और आसान और तैयारी और स्वादिष्ट। तो आप अगर सही जवाब देते हैं तो आपको मिल सकता है ये गुडी बैग जिसमें फॉर्मलैंड फैमिली सीरियल है, इसमें फॉर्मलैंड मिल्क पाउडर है, इसमें एक मग है, एक टोट बैग है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकता है अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब देते हो फोन करके। एंड लेट मी टेल यू कि इनका एक वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है पूरी फैमिली के लिए, फॉर्मलैंड मिल्क, फॉर्मलैंड फैमिली सीरियल, फॉर्मलैंड हॉट चॉकलेट। ओके, तो चलिए आप लोग भी एक स्मार्ट चॉइस कर ही लीजिए। आप मदम शीला को सुन लीजिए और फिर उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा फोन करके।
1: L'habitude qui jamais pousse en zé, mon tea time avec Formland.
2: Ah ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
1: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une ben bonne préparation avec Formland.
2: Mmh, ou fais-moi faire.
1: Astère avec Formland Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
2: Astère avec Formland, nous gagnons encore beaucoup plus.
1: Formland, ça même nous. Smart choice.

0: यस हमने आपसे सवाल किया था, हमने आपसे पूछा था कि भाई आपको मुझे बताना है कि वो तीन टैगलाइंस कौन से हैं, और आपको यहाँ पर मुझे तीनों टैगलाइंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन किया और कुछ लोगों के फ़ोन कट भी गए, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। और चलिए नंबर आपको पता ही है और आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: Hi, good morning.
0: Good morning, जी कौन बोल रहे हैं?
1: This is Ritishta from Mount Albert.
0: Sorry?
1: Ritishta from Mount Albert.
0: Ritishta. Okay, Ritishta from Mount Albert. अब आपको मुझे बताना है कि आपने वो तीनों taglines सुने हैं?
1: हाँ.
0: अब बताइए वो तीनों taglines कौन से हैं?
1: Onko plus simp, onko plus prepare, onko plus gourmand.
0: तो आप ज्यादा तैयारी करके आई हैं। वेल दैट्स द राइट आंसर, कंग्रेचुलेशंस टू यू।
1: थैंक यू।
0: तो यहाँ पर सही जवाब देकर आप बन गई हैं हमारी विनर, कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आपको मैं बताऊँ, आपको मिल रहा है गुडी बैग, और ये गुडी बैग आपको फार्मलैंड की तरफ से मिल रहा है, जिसमें होगा फार्मलैंड फैमिली सीरियल, फार्मलैंड मिल्क पाउडर 1 kg, फार्मलैंड मिल्क पाउडर 500 grams, एक एक्सक्लूसिव मग, एक टोट बैग। और आपको मैं कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आपको अपना गुडी बैग अपने आईडी के साथ आकर MBC कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड पार्टिसिपेट करने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच माय डियर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।
1: Thank you,
2: same
1: to you, bye.
0: Bye.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Kamla, elle a senti bon coup de toi là. Qui? Tu bains de parfum? Tu l'auto aussi bains de parfum? Tu sales des bains si bains de parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandal à le kick? Et toi l'im sandal 24-7 toi?
4: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fait que t'es beau, qui celle-là?
2: Allo Kick Gel Air Fresh No Pocket Size? Astier, me comprends. Tu mets Air Fresh No dans ton poste mon sport, tout.
4: Vrai même, t'es bien comique, toi. Allez, essaye tout. Allo Kick, peine ce deuxième sans bosser.
5: Allo Kick, freshness anytime, anywhere.
6: Problème liquide? Les baguettes, les alliés. Les capaves, moi. Les capaves, toi. Les capaves, nous tous. Protège tu les quais aujourd'hui. Pour qu'ils te disent, tu pas à risque un bon problème de quais. Allô, enjoy your life avec Enke Life, parce qu'il s'abondit les Enke Life là, et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te bonne activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit les Enke Life, mais là, te pébran soin de l'équerre. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
2: RM2
3: Radio Musty.
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musty.
0: चलो जी, जीतने के लिए तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इनाम हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। अभी फ़िलहाल अगर आप चाहते हो किसी का बर्थडे स्पेशल हो, किसी की पार्टी में आप शामिल हो, और अगर आप उनको कोई वाउचर दिला सके, और वो भी लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से, तो चलो आपको मैं देती हूँ मौका। आप जल्दी से 5491294 पे जिनका बर्थडे है उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर भेजिए, और क्या पता आज का जो वाउचर है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से हो जाए उनके नाम।
7: RM2 Radio Musty.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: And yes, you're listening to Radio Musti Vidita के साथ और यहाँ पे हम तो कब से कॉल पे कॉल इतने सारे लोगों को कॉल कर रहे हैं लेकिन पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहे। मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन उठा लो, मुझे आपको गिफ्ट देना है लेकिन वो तो उठा नहीं रहे हैं फोन, में क्या करूँ। एक्चुअली 4 लोगों को हम फोन कर चुके हैं यहाँ अब तक और हमारे फोन में कोई खराबी नहीं है, डोंट वरी। लेकिन ये है ना कि हम लोग कोशिश करें तो कम से कम कोई तो मिल जाए जिनको हम फोन करके हैप्पी बर्थडे बोल दे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए देखते हैं कौन है, कम से कम कोई आ जाए। कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर अब हम उनको हैप्पी बर्थडे विश कर ही देते हैं जिनका आज बर्थडे है। और यहाँ पर उनके लिए काफ़ी प्यारा मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ इनको आप फ़ोन कीजिए, पैसे सरप्राइज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि भाई जितने भी लोग अपना जब यहाँ पर मैसेज भेजते हैं मेक शो कि उस दिन उनको आप थोड़ा फ्री करवा दें। तो यहाँ पर कविश का बर्थडे है एक्चुअली और कविश को हम हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं और यहाँ पर उनके लिए अंजू की तरफ से, उनकी दीदी है अंजू, उन्होंने उनको हैप्पी बर्थडे विश किया है। सो हम वेट कर रहे हैं लेकिन ना उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। सो कविश को हैप्पी हैप्पी बर्थडे और आपके लिए मैसेज आया था आपकी दीदी अंजू की तरफ से, वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। आपको मिल रहा है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर जो आपको आज नहीं तो कल MBC आकर कलेक्ट करना पड़ेगा अपने ID कार्ड के साथ।
0: मॉर्निंग बीट,
4: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: एंड यस, चलिए अरविंद आ गए हैं, अब बात करते हैं हम कि क्या चल रहा है हमारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, हमारे मॉरिशन क्या कर रहे हैं। चलिए उनको थोड़ा सा हम भी चेयर करते हैं कि हमें भी भाई मेडल चाहिए, मेडल चाहिए। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक मॉरिशस को पहला मेडल नहीं मिला है, पर वेट लिफ्टिंग में कल हमारे प्रतिनिधियों का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा। केती लॉन्ग चौथा स्थान ले पाई, पोडियम से केवल 1 किलोग्राम कम। दिनेश पांडू को एक टेक्निकल मिस्टेक के लिए पेनलाइज किया गया, नहीं तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लेता। बॉक्सिंग में क्लोए गैब्रियल और जिगी अगत क्वार्टर फाइनल मैच में हार गए। आज शाम 5 बजे मैवे क्लेयर क्वार्टर फाइनल में होगा। एक जीत और मॉरिशस का पहला मेडल, उसका सामना गाना के अकई नेते से है। राशेल क्लोपफेनस्टाइन आज 800 मीटर के सेमीफाइनल में होगी और नोएमी अल्फोंस भी मॉरिशस को पहला मेडल दिलाने के लिए एकदम तैयार है। मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया के पास है 34 गोल्ड मेडल, टोटल 78, कनाडा 13, इंग्लैंड 10, स्कॉटलैंड के पास है 7, नाइजीरिया के पास 6 गोल्ड मेडल। कल 100 मीटर फाइनल में कमरून के इमानुएल इसेमे की जीत, गेम रिकॉर्ड 9.53 सेकंड्स क्रोनो के साथ। लड़कियों में न्यूजीलैंड की जोए होप्स स्प्रिंट की महारानी बनी। भारतीय एथलीटों में अब तक 2 गोल्ड मेडल, मीराबाई चन्नू वेटलिफ्टिंग और शर्मिला धनकर पैरा एथलेटिक्स में। गुलवीर सिंह, सर्वेश कुशारे, ऋषि कांता सिंह चनम्बम, फिर मुत्तुपांडी राजा, ज्ञानेश्वर यादव, बलूरी अय्या बाबू, हरजिंदर कौर और बिंदिया रानी देवी मेडल्स जीत पाए। बॉक्सिंग में आज कई मेडल्स की उम्मीद है भारतीय टीम की ओर से। फ्रांस का नेशनल कोच बना जिनेदीन जिदान। जिजे देशों 14 सालों तक ले ब्लू का कोच था, उसके स्थान पर जीजू बना नया बॉस। इटली के स्क्वाड्रा अजूरा में वापस आया रोबर्टो मांचिनी। इटली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुई थी तो गेनारो गातुसो को निकाला गया। अंद्रेया पिर्लो नया बॉस बनने वाला था, पर एक रशियन बेटिंग कंपनी के साथ उसके संबंध के कारण उसे हटना पड़ा। पाओलो मालदीनी के स्थान पर क्लाउडियो रानियरी नया टेक्निकल डायरेक्टर होगा। जावी अलोंसो का पहला मैच चेल्सी के साथ और पहली जीत। जोआओ पेड्रो का हैट्रिक पर चेल्सी ने वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स को 6-4 से हराया। अन्य मैचों में विलेंशिया ने डर्बी को 2-1 से हराया। आली 1 फुलहम 1, आस्टन विला की हार

0: रॉयल सोसाइटी ने उसे 4-2 से हराया, स्टोक 1 एवर्टन 0। और कल ही यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच खेले गए, साबा ने कर्प्स टीम को 2-0 से हराया। रेड इम्स और जियालबी के बीच मैच ड्रॉ 0-0 ऑन एग्रीगेट, जियालबी टीम क्वालिफाई। दिनामो जागरेब और टून के बीच मैच ड्रॉ 2-2, दिनामो जागरेब क्वालिफाई। सेलिये और इग्नासिया के बीच मैच ड्रॉ 2-2, पेनाल्टी पर सेलिये की टीम क्वालिफाई। हार्ट्स को हराया स्टुमकाज ने 2-0 से। और शामरॉक 2 अरारत आर्मेनिया 1, फिर भी अरारत आर्मेनिया की टीम क्वालिफाई होती है अगले राउंड के लिए। आज भी यूरोपा लीग कॉन्फ्रेंस लीग के मैच खेले जाएंगे। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते आपको याद दिला दे, डोंट मिस द कॉमनवेल्थ गेम्स एमबीसी के चैनल 11 पर। और आज बॉक्सिंग में, फिर 800 मीटर रेस में और पैरा एथलेटिक्स में उम्मीद है कि मॉरिशस आज मेडल लेकर आए। और चलते चलते ये खबर भी आपको दे दे, एक बहुत ही सुखद खबर, हैप्पी टू हियर कि सरजू गौरीशंकर को मॉरिशस की अंडर 20 फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है, नेशनल कोच। कुसाफा कप के लिए सरजू गौरीशंकर हमारे खिलाड़ियों को तैयार करेगा। कह सकते हैं कि फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है सरजू के साथ, बधाई हो। नमस्कार, हैव अ ग्रेट टाइम लिसनिंग Radio Musti. Bye bye.
1: Thank you, Arvind. Thank you so much.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: तो यहाँ पर एक और गेम के साथ हम हाजिर हो गए हैं. यस, ये है आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4. अब यहाँ आपको क्या मिल सकता है, वैसे आपको रिलैक्स करने का अगर कोई मोमेंट चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज टू प्ले विद RM2 एंड विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय आयुर्योगा इंटरनेशनल. अभी ये जो आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा है सीजन 4 ऑर्गेनाइज किया है मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन ने, और ये उसी एक्साइटमेंट के साथ आ गए हैं वापस. इट्स रियली बहुत ही एक एक्साइटिंग गेम जिसे बहुत हमारे जो क्रिकेट लवर्स हैं फॉलो करते हैं. तो हमारे जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा है आपको मिल सकता है इसमें हिस्सा बनने का इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP. ये शुरू हो रहा है 1 अगस्त को at SSR National Cricket Ground Mapu, जहाँ पे 3 teams participate करने जा रहे हैं. इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए. मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ, आपको मुझे बताना है कि इंडिया में किस क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है. जी हाँ, इंडिया के किस क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है. आपके जवाब ऑन 549 and 1294.
0: Morning beat.
3: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, Radio Musti, आप विदिता का साथ दे रहे हैं. प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए मॉर्निंग बीट. चलिए कोशिश कर रहे हैं आपके सभी स्ट्रेस को बीट करने की. और यहाँ पर बाहर का जो मौसम है, इट्स सो लवली. अब ऑन इज डे 29th of July. हेलो, गुड मॉर्निंग. और हमने आपसे सवाल किया था, विच क्रिकेटर इज नोन एज द मास्टर ब्लास्टर, एंड द राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर. जी हाँ, इनके बहुत बहुत बहुत सारे फैंस हैं. और भाई अब इंडियन ये जो हमारे क्रिकेटर हैं, इनको तो इंडिया में ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनको पसंद किया जाता है, इनके ही चर्चे हैं. चलिए, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. आयरलैंड क्रिकेट एक्सट्रावेगेंजा जो है वो season 4 ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन, विच इज बैक विद एक्साइटमेंट फॉर इट्स व्यूअर्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP. स्टार्टिंग एज फ्रॉम 1st of August एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू, जहाँ पे 3 टीम्स मैंने कहा था पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उनमें है कॉन्टिनेंटल चीताज, AMG पैंडर्स, कैंपस ब्रोड लायंस, APP लियोपार्ड्स, और साथ में है वन हेल्थ जैगुअर्स, थॉमस कुक टाइगर्स. तो आप लोग चाहे तो विजिट कर सकते हैं टू सपोर्ट योर टीम. मैचेस जो है विल बी प्लेड ऑन सैटरडे आफ्टरनून एंड संडे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. ठीक है, वाउचर जो है अभी आपको मैं क्या दूं, सोचो. तो यहाँ पर चलिए, हम आपको दे रहे हैं एक गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट. जी हाँ, इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट की तरफ से आपको मिल रहा है 500 रुपीज का वाउचर, जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा. कंग्रेचुलेशंस किसको बोले, चले नाम तो पता हो. ये है लवीना सुखदेव ऑफ कैट्रमोन. कंग्रेचुलेशंस, आपने इनाम जीता है. एंड आप वेट करें, आपका जो वाउचर है उसको बहुत जल्द पोस्ट कर दिया जाएगा.

0: s'occupe de tout pour nous faciliter la vie. Pour les enfants, c'est la magie du Happy Meal. Espace de jeu, face painting et des animations gratuites. Retrouvez le programme complet des animations sur la page Facebook de McDonald's Maurice. McDonald's, les vacances se savourent ensemble. McDonald's, pa-da-pa-pa-pa, I'm loving it.
1: Tech Mag, powered by
2: 365. Bien plus encore.
3: What if your next household helper wasn't a person, but a humanoid robot? A robot called Neo has been making headlines after videos of its remarkably human-like hands went viral. Developed by robotics company 1X, Neo can perform delicate tasks such as picking grapes, unzipping a jacket, opening a snack packet, plugging in a cable, and even building with Lego blocks, all with impressive precision. Its hands have 25 degrees of movement, allowing them to mimic many of the movements of a human hand. Technology is designed for more than just showing off. Developers hope robots like Neo will one day help with everyday household chores, assist older adults with daily tasks, and even work safely alongside people in homes and workplaces. While Neo isn't ready to become your next roommate just yet, its latest demonstrations show just how quickly humanoid robotics is advancing. The future of home assistants may not be as far away as we once thought.
1: Mag was powered by
2: 365. Bien plus encore.
4: RM2.
5: Radio Musty.
4: A good beat for your morning show. RM2.
5: Radio Musty.
6: एंड यस दोस्तों, एक और गेम के साथ आ गए हैं हम। अभी हम खेल रहे हैं विद बार्चेलो। जी हाँ, बार्चेलो, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनके प्रोडक्ट रेंज में आता है परफ्यूम, जिसमें है फॉर एवर एडिशन, हार्मनी एडिशन, मिस्टिक एडिशन, निश इन्फिनिटी एडिशन, निश पैराडाइज एडिशन, साथ में डेनिथ एडिशन। इसमें बॉडी मिस्ट, हेयर परफ्यूम, शावर जेल, शैम्पू, डिओडोरेंट और रोल ऑन, गिफ्ट सेट, कोलोन, बहुत कुछ आता है। तो आप अगर यहाँ हमारी इस बार्चेलो की तरफ से 500 रुपीस का वाउचर चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज टू टेल मी ऑन व्हाट डेट डिड बार्चेलो मॉरिशस ऑफिशियली ओपन इट्स डोर। ऑन व्हाट डेट डिड बार्चेलो मॉरिशस ऑफिशियली ओपन इट्स डोर्स। आपको मुझे जवाब देना है ए 19th मार्च 2026, बी 19th फरवरी 2026 या 19th अप्रैल 2026। आपके जवाब ऑन 549-1294 पूरे नाम और पते के साथ।

0: चलो भी इसी के साथ हमारे जो विनर हैं जो जा रहे हैं इस 500 रुपीस के वाउचर के साथ फ्रॉम बारजलो इज किरण फ्रॉम पॉम्पलेमूसेस. कांग्रेचुलेशंस टू यू. आपका जो वाउचर है आपको पोस्ट कर दिया जाएगा. और चलिए इसी के साथ समय हो गया है, हम बढ़ने जा रहे हैं 8 बजे की समाचारों की ओर. मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 8 बजे हैं.

सबको एक नमस्ते संक्षिप्त समाचार सुना जा। बजट 2026-2027 में घोषित कदम के लागू करे खातिर काल राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल आर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल के दूसरका पढ़त खातिर पेश करल गल। प्रधानमंत्री बोलन कि ई दोनों विधेयक के उद्देश्य देश में आर्थिक व्यवस्था के मजबूत करे के है और ये बजट में घोषित जो न कदम बाटे ओकरा लागू करे के है। फाइनेंस बिल के तहत 26 कानून और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल के तहत 58 कानून में संशोधन के प्रस्ताव बाटे। राष्ट्रसभा में एक बार फिर से ये मुद्दा उठावल गल। सांसद रूपनाथ दोहियाओ का राष्ट्रसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू से विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड C12 में स्वच्छता साफ सफाई की स्थिति खासकर कबूतर आरी चूहा के मौजूदगी के लेके सवाल करलन। स्वास्थ्य मंत्री बोलन कि जांच में वार्ड के भीतरे कोनो प्रकार के चूहा या दूसर जीव के संक्रमण के कोनो प्रमाण नहीं बाटे, सबूत नहीं बाटे। वो आगे बोलन कि नियमित जांच के दौरान अस्पताल के प्रांगण में एगो मरल चूहा मिलल और कभो कभो जो न खिड़की बाटे खुलर रहेला तो कबूतर वार्ड के भीतर चलावेला। मंत्री आश्वासन देलन कि निगरानी लगातार जारी बाटे और मरीज अस्पताल के काम करवा लोग और आम जनता के सुरक्षा के आज मजबूत करे खातिर आर कदम उठावल जाए। SBM Holdings Limited बगल से जारी कम्युनिके में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बगल से सूचित करल गल है कि एगो आंतरिक जांच के चलत ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हाउल क्लोड निकोला जिफले के खिलाफ अनुशासन के लिए के कार्रवाई चलत बाटे जेकर खातिर उनका तुरंत सस्पेंड कर देवल गल है जब लेक ई जांच पूरा नहीं हो जाला। ये बीच ग्रुप के डेप्यूटी CEO मुनि सिंह जना नायक जी के एक्टिंग CEO बनावल गल है। हाल में प्रसारित कई गो जानकारी के बाद फनपक जो त्रिबेका में बाटे वो कई गो महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देले बाटे। वो बोले बाकी उद्घाटन ले अक्ते सुरक्षा के लेके सब मंजूरी प्राप्त करल गल है जिनमें जो दमकल कर्मी बा यानी आग के लेके ओकर से जुड़ल मंजूरी वो मिलल। पार्क में मौजूद सब राइड्स आरी उपकरण के निरीक्षण एगो अधिकृत मॉरिशन इंजीनियर बगल से करल जाला। बखेर फन पार्क के मूल योजना में कईगो बदलाव करल गल है। अर्जुन खातिर एगो नावा बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट में संशोधन के आवश्यकता बाटे। ये संशोधन जब लेकर नहीं हो जाए आरी परमिट नहीं मिल जाए तब लेकर फन पार्क सब अधिकारी के सहयोग से अपन गतिविधि के अस्थायी रूप से सस्पेंड करे के निर्णय ले बाटे। आज गुरु पूर्णिमा बाटे। गुरु पूर्णिमा भारत के संस्कृति के एगो पवित्र आरी महत्वपूर्ण पर्व है। ई दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान आरी कृतज्ञता व्यक्त करे

0: के अवसर प्रदान करेला, गुरु हमनी के ज्ञान देवेलन, मार्गदर्शन करेलन, संस्कार से जीवन के सही दिशा देवेलन। इस शुभ अवसर पर ही सब शिष्य लोग अपन गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करेलन जा आरे उनकर अमूल योगदान के नमन करेलन सा। स्कॉटलैंड में ग्लास्को कॉमनवेल्थ खेल में हभिलेख हमनी के हम वतन कईगो प्रतियोगिता में भाग लेलन स आरे उनकर प्रयास जारी बाटे। आज पर एथलेटिक्स में नोएमी अल्फोंस 1500 मीटर के रेस में देश से खातिर गोल्ड मेडल जीते की कोशिश करियन। ये प्रतियोगिता आज रात 10 बजे स्पोर्ट्स 11 पर ही देखे सक बजा। विदेश के खबर में जापान में जोरदार भूकंप के कारण कम से कम 13 जना के मौत भेल बाटे। कई गो जना के घायल के घाव लगल बा। कुमामोतो इलाका के गो मॉल के मलबा में फसल जना के निकाले के कोशिश करल जात बा। ओकर भिड़े हुए एगो कारखाना के चिमनी गिर गल जो जेकर नीचे कई गो जना दबकल हवन जा। दूसर दूसर इलाका में कई गो जना लापता हवन स रिक्त पैमाने परी। भूकंप की तीव्रता 6.8 के मापल गल। तय रहल संक्षिप्त समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musty in the mix.
4: Girl, hey.

0: ड्राइव कर रहे हो ना, जरा आराम से.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: वैसे मुझे पता है जब ये गाना चल रहा था तो आप ड्राइव करते करते हिल तो जरूर रहे थे, मजा तो बड़ा आ रहा था. देखो झूठ मत बोलो, मजा तो बड़ा आ रहा था आपको, है ना, जानती हूँ मैं. चलो झूम लिया घूम लिया, अब क्या करें. अब ये भी जान लेते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा. बाय द वे गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:09 हुए हैं. यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट विदिता के साथ और यहाँ पर हमारा मॉर्निंग बीट शुरू हो गया है 7 बजे. हम रहेंगे साथ 9 बजे तक, यानी कि चलो इस घंटे में हम कोशिश करेंगे अभी कुछ गीतों के साथ मूड चेंज करें. और आज मॉर्निंग में बहुत सारे लोग हैं जो शायद थोड़े अकेले अकेले फील कर रहे होंगे. कोई बात नहीं जी, हम हैं ना, इसीलिए तो हम साथ देने आते हैं. क्योंकि अगर आप अकेले हो तो आपका हमसफर बनने के लिए हम ऑलवेज रेडी रहते हैं. बहुत बातें हो गई याचना से मिलने, जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा. था याचना,
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ओनली टू विनर्स.
3: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं. पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे. इसके अलावा हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है. कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहेगा. दोपहर बाद भी पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश होगी. हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से पूर्व की ओर से बहेगी. प्रवाहरेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी. आज सुबह और आज दोपहर बाद को दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 और अधिकतम 21 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आज सुबह सूर्योदय 6:41 पर, शाम को सूर्यास्त 5:51 पर होगा.
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
4: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
5: Et promotion, bidoun balle. Un concombre vert pour 16,95 €. Un pâtisson pour 29,95 €. 500 grammes mandarine pour 44,95 €. 500 grammes blanc, cuit sec, aile de poulet frais pour 104,95 €.
4: Pas de prix là. Bazaar, Moudirou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
6: On est tous Winners.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तो गाइस विनीता के साथ है रेडियो मस्ती और ये है आपका मॉर्निंग बीट। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्या एक सवाल मैं करूँ और आपको मुझे जवाब देना होगा 549 और 1294 पूरे नाम और पते के साथ। देखो सवाल बहुत आसान है, हम खेल रही हैं विनर्स के साथ और आपको मौका मिलेगा 500 रुपीज का एक वाउचर जीतने का। वाउचर कैसे जीतोगे, पहले मैं सवाल करूँगी फिर आप जवाब दोगे, फिर उसके बाद अगर जवाब सही रहा तो लकी ड्रॉ पे आपका नाम आएगा, फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा ये नाम। तो चलो सवाल है फॉर वेडनेसडे 29th of July। ओके अंटिल 29th of July व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ ओला उदी सॉस 1.5 लीटर्स पैक ऑफ 6। ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। अंटिल 29th of July व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ ओला उदी सॉस 1.5 लीटर्स पैक ऑफ 6। सही जवाब आपको देना है मुझे ऑन 549 और 1294। याद रखिए पूरे नाम और पते के साथ।
0: मॉर्निंग बीट।
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: हमने आपसे सवाल किया था थोड़ी देर पहले, हमने आपसे पूछा था कि अंटिल 29th ऑफ जुलाई व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ ओला ओडिसोस 1.5 लीटर पैक ऑफ 6. और यहां पर काफी सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिए हैं. वेल, नॉर्मल प्राइस है 150 रुपीज, प्रमोशनल प्राइस है 99 रुपीज. देखते हैं कि विनर्स की तरफ से ये 500 रुपीज का वाउचर किसको मिलता है. ओके, तो यहाँ पर नाम आया है दीपक चमन का, जो रहते हैं पोंटो साबले. कांग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको

0: मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है विनर्स की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा. सो थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया. इसी के साथ नेक्स्ट गाना आपके लिए, और इसी गाने को गुनगुनाते हुए अभी थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं एक बार फिर स्पोर्ट्स की ओर.
1: मॉर्निंग बीट,
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
4: वो नहीं आने वाली,
5: आने वाली, आने वाली,
4: वो बेवफा छलावती.

0: अरे तीन बार बोल दिया, अब आगे बढ़ो।
1: आई आई आई मैं तो आई मैं आई आई आई आई आ जा। लेकिन वो भी आया। कौन आया? अरे भाई बोला था ना कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड की ओर बढ़ना है, एक बार फिर अरविंद से मिलना है जिन्होंने स्पोर्ट्स मिस कर दिया।
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
1: आइए, आपका इंतजार था। तो एक दो तीन करते हुए आ गए हैं अरविंद। गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक मॉरिशस को पहला मेडल नहीं मिला है, पर वेट लिफ्टिंग में कल हमारे प्रतिनिधियों का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा। केती लॉ चौथा स्थान ले पाई, पोडियम से केवल 1 किलोग्राम कम। दिनेश पांडू को एक टेक्निकल मिस्टेक के लिए पेनलाइज किया गया, नहीं तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लेता। बॉक्सिंग में क्लोए गैब्रियल और जिगी अगत क्वार्टर फाइनल मैच में हार गए। आज शाम 5 बजे मेवे क्लेयर क्वार्टर फाइनल में होगा। एक जीत और मॉरिशस का पहला मेडल, उसका सामना गाना के अकेई नेते से है। राशेल क्लोपफेनस्टाइन आज 800 मीटर के सेमीफाइनल में होगी और नोएमी अल्फोंस भी मॉरिशस को पहला मेडल दिलाने के लिए एकदम तैयार है। मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया के पास है 34 गोल्ड मेडल टोटल 78, कनाडा 13, इंग्लैंड 10, स्कॉटलैंड के पास है 7, नाइजीरिया के पास 6 गोल्ड मेडल। कल 100 मीटर फाइनल में कमरून के इमानुएल इसेमी की जीत, गेम रिकॉर्ड 9.53 सेकंड्स क्रोनो के साथ। लड़कियों में न्यूजीलैंड की जोए होप्स स्प्रिंट की महारानी बनी। भारतीय एथलीटों में अब तक 2 गोल्ड मेडल, मीराबाई चन्नू वेटलिफ्टिंग और शर्मिला धनकर पैरा एथलेटिक्स में। गोलवीर सिंह, सर्वेश कुशारे, ऋषि कांता सिंह,

0: चनम बम, फिर मुत्तुपांडी राजा, ज्ञानेश्वर यादव, बलूरी अय्या बाबू, हरजिंदर कौर और बिंदिया रानी देवी मेडल्स जीत पाए। बॉक्सिंग में आज कई मेडल्स की उम्मीद है भारतीय टीम की ओर से। फ्रांस का नेशनल कोच बना जिनेदीन जिदान। जिजे देशों 14 सालों तक ले ब्लू का कोच था, उसके स्थान पर जीजू बना नया बॉस। इटली के स्क्वाड्रा अजूरा में वापस आया रोबर्टो मांचिनी। इटली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुई थी तो गेनारो गातुसो को निकाला गया। अंद्रेया पिर्लो नया बॉस बनने वाला था, पर एक रशियन बेटिंग कंपनी के साथ उसके संबंध के कारण उसे हटना पड़ा। पाओलो मालदीनी के स्थान पर क्लाउडियो रानियरी नया टेक्निकल डायरेक्टर होगा। ज़ावी अलोंसो का पहला मैच चेल्सी के साथ और पहली जीत। जोआओ पेड्रो का हैट्रिक पर चेल्सी ने वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स को 6-4 से हराया। अन्य मैचों में वेलेंशिया ने डर्बी को 2-1 से हराया। आली 1 फुलहम 1, आस्टन विला की हार, रियल सोसिएदाद ने उसे 4-2 से हराया। स्टोक 1 एवर्टन 0। और कल ही यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच खेले गए। साबा ने कर्प्स टीम को 2-0 से हराया। रेड इम्स और जियालबी के बीच मैच ड्रॉ 0-0 ऑन एग्रीगेट, जियालबी टीम क्वालिफाई। दिनामो जागरेब और टून के बीच मैच ड्रॉ 2-2, दिनामो जागरेब क्वालिफाई। सेलिये और इग्नासिया के बीच मैच ड्रॉ 2-2, पेनाल्टी पर सेलिये की टीम क्वालिफाई। हार्ट्स को हराया स्टुमकाज ने 2-0 से। और शामरोक 2 अरारत आर्मेनिया 1, फिर भी अरारत आर्मेनिया की टीम क्वालिफाई होती है अगले राउंड के लिए। आज भी यूरोपा लीग कॉन्फ्रेंस लीग के मैच खेले जाएंगे। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते आपको याद दिला दे, डोंट मिस द कॉमनवेल्थ गेम्स एमबीसी के चैनल 11 पर। और आज बॉक्सिंग में, फिर 800 मीटर रेस में और पैरा एथलेटिक्स में उम्मीद है कि मॉरिशस आज मेडल लेकर आए। और चलते चलते ये खबर भी आपको दे दे, एक बहुत ही सुखद खबर, हैप्पी टू हियर कि सरजू गौरीशंकर को मॉरिशस की अंडर 20 फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है, नेशनल कोच। कुसाफा कप के लिए सरजू गौरीशंकर हमारे खिलाड़ियों को तैयार करेगा। कह सकते हैं कि फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है सरजू के साथ। बधाई हो। नमस्कार, हैव अ ग्रेट टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती। बाय बाय।
1: मॉर्निंग बीट।
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: good beat for your morning show. From RM2
1: Radio Musty.
2: चलो जी, अभी समय हो गया है, आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये है मर्श शॉपिंग फेस्टिवल. यस ऑफ कोर्स, द गेम इज पावर्ड बाय राजदान वर्क्स लिमिटेड और आप खेलेंगे एमबीसी के साथ एंड आपको मौका मिलेगा कि राजस्थान वर्क्स और एमबीसी के साथ खेलकर आपको मिले एक मौका जीतने का 4 एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मर्श शॉपिंग कार्निवल जो कि पावर्ड है बाय SBI एंड LIC जो शुरू हो रहा है 12 अगस्त को, चलेगा 16 अगस्त तक एट SBICCPI. जी हाँ, दिन के 10 बजे से रात के 9 बजे तक, यानी काम के बाद शॉपिंग, खाना पीना ये सब हो सकता है. एकदम 5 दिनों का एक्सपीरियंस होगा ऑफ शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन फीचरिंग इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कानमा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, फूड फेस्टिवल होगा. ये सब ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. तो चलिए, आपके लिए मैं एक सवाल लेकर आई हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि 2010 में धर्मेश सर जो है, he was hired by फराह खान to choreograph a हिंदी मूवी. 2010 में

0: धर्मेश सर को हायर किया गया था फराह खान की तरफ से टू कोरियोग्राफ अ हिंदी मूवी. आप मुझे फिल्म का नाम बताइए. आपके जवाब ऑन 5491294. याद रखिए आपको मुझे जवाब देना है पूरे नाम और पते के साथ.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, लेकिन इससे तो मैं यही कहूंगी कि और भी बहुत सारे मूव्स हैं जो आपको पता होगा. जब कोई भी गाना हम सुनते हैं तो ऐसे मूव्स होते हैं जो घर पे हम ट्राई करते हैं. जैसे गाना चलता है हम शुरू हो जाते हैं, उनका जो स्टेप्स होता है आप शुरू हो जाते हो. तो मैंने भी कोशिश की यहाँ पर डांस करने की, लेकिन एक स्टेप है जो सबको पता है और वो है माय नेम इज शीला, शीला की जवानी. आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल. अब मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही था. हमने आपसे पूछा था, हमने आपसे पूछा था कि ये जो धर्मेश सर है, इन्होंने 2010 में फराह खान के साथ, फराह खान ने उनको हायर किया था टू कोरियोग्राफ अ मूवी, और फिल्म का नाम आपको मुझे बताना था. फिल्म का नाम है 30 मार खान, और इस फिल्म का गाना है शीला की जवानी. क्या डांस किया था, हाय हाय मेरी रानी. आई एम टॉकिंग अबाउट कैटरीना कैफ. तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन लकी ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा. लकी ड्रॉ के बाद किसका नाम आया है? ऑलराइट, चलिए, बहुत सारे लोगों ने फिंगर क्रॉस किया था और यहाँ पे नाम आया है वर्षा सीबू का, जो रहती है वाक वाक. कंग्रेचुलेशंस, आपने एकदम सही जवाब दिया है, आपका नाम आया है लकी ड्रॉ के बाद, और आपको मिल रहा है MBC और राजस्थान वर्क्स की तरफ से ये 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. 12 अगस्त से 16 अगस्त तक SBICC Pi में दिन के 10 बजे से 9 बजे, रात के 9 बजे तक आप शॉपिंग करेंगे. तो यहाँ पर इंटरनेशनल होम शॉपिंग होगा और एंटरटेनमेंट शोज तो मैंने बताया, मैजिक शोज, फैशन शोज, और इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन यहाँ पे होंगे आपके लिए परफॉर्म करने के लिए. और वहीं पे जो बॉलीवुड कोरियोग्राफर हैं धर्मेश सर, वो भी वहाँ पे आएंगे. उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है. तो कानमा का शो, ब्लड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल, ये सब ऑर्गेनाइज किया गया है इवेंट वर्क्स लिमिटेड की तरफ से. तो ऐसा है कि आप लोग साथ देते रहिए, डांस करते रहिए. शीला की जवानी की बात की थी ना, चलिए इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो.

0: दोस्तों जो ऊपर वाले ने आपके लिए डिसाइड किया है ना, आपकी जो डेस्टिनी है वो किसी भी ह्यूमन ओपिनियंस, कंपटीशन या ऑपोजिशन से छीना नहीं जा सकता. बिकॉज द राइट डोर्स विल ओपन, द राइट अपॉर्चुनिटीज विल फाइंड यू, एंड व्हाट इज योर्स विल अराइव एट द अपॉइंटेड टाइम. तो बस सही समय का इंतजार करना है और ऊपर वाले भी बिलीव करना है.
1: Oh God, one more remix. A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: लव यू जिंदगी और यहाँ पर बस प्यार प्यार प्यार एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराकर हंस के सभी आज हमारा घर खिला खिलासा है. सो वेलकम मनीष मां.
1: गुड मॉर्निंग बेरिता.
0: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पूनम.
1: गुड मॉर्निंग.
0: तो चलिए हमारा घर भरा भरा है भाई. हमारे बाद मनीष मालिकर आ रही हैं आपके लिए नेक्स्ट शो, उनका साथ दीजिएगा. मैं चली पतली गली निकल आऊंगी कुछ और गाने आपके लिए, लेकिन वो होगा कल सुबह 7 बजे. लव यू. बाय बाय.

नमस्ते और आप सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। आप सुनिए संक्षिप्त समाचार। बजट 2026-2027 में घोषित कदमों में लागू करने की दिशा में कल राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को दूसरी पढ़त के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में आर्थिक और सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा बजट में घोषित वित्तीय, आर्थिक और सार्वजनिक वित्त से जुड़े कदमों को लागू करना है। फाइनेंस बिल के तहत 26 कानूनों और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल के तहत 58 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। राष्ट्रसभा में एक बार फिर ये मुद्दा उठाया गया। सांसद हुबना दोहियाओ के ने कल राष्ट्रसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू से विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड C12 में स्वच्छता की स्थिति, विशेष रूप से कबूतरों और चूहों की मौजूदगी को लेकर सवाल किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि निरीक्षणों में वार्ड के भीतर किसी भी प्रकार के चूहों या अन्य जीवों के संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि नियमित निरीक्षण के दौरान अस्पताल के परिसर में एक मरा हुआ चूहा मिला और कभी कभी खुली खिड़कियों से कबूतर वार्ड के अंदर आ जाते हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि निगरानी लगातार जारी है और मरीजों, अस्पताल के कर्मचारियों तथा आम जनता की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। SBM Holdings Limited द्वारा जारी कम्युनिके में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सूचित किया गया कि एक आंतरिक जांच के चलते ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर राहुल क्लोद निकोला जुफ्ले के खिलाफ अनुशासन को लेकर कार्रवाई चलाई जाएगी और इसी दिशा में उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। इस बीच ग्रुप के डेप्यूटी CEO मुनि सिंह जाना नायकेनी को एक्टिंग CEO बनाया गया है। और ये खबर ट्रीबेका के फन पार्क के संचालकों द्वारा एक कम्युनिके जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि हाल में प्रसारित की गई जानकारी के बाद फन पार्क का कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देना चाहता है। उद्घाटन से पहले सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई थीं जिनमें अग्निशमन से जुड़ी मंजूरियाँ भी शामिल हैं। पार्क में मौजूद सभी राइट्स और उपकरणों का निरीक्षण एक अधिकृत मॉरिशन इंजीनियर द्वारा किया गया है। फिर भी फन पार्क ने पार्क की मूल योजना में कुछ बदलाव किए हैं। इस संदर्भ में इन नए बदलावों को शामिल करने और सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट में संशोधन यानी सुधार के लिए आवेदन किया गया है और जब तक कि ये परमिट वापस सुधार के साथ नहीं मिल जाता तब तक पार्क की गतिविधियों को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा रहा है। और आज का दिन विशेष रूप से हमारे गुरुओं को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु ही अपने ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कार

0: विचारों से जीवन को सही दिशा देते हैं। इस शुभ अवसर पर शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें ज्ञान, विनम्रता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। विदेशी समाचारों में जापान में जोरदार भूकंप के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। कुमामोटो इलाके में एक मॉल के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पास के एक कारखाने की चिमनी भी दह गई जिसके नीचे कई लोग दब गए। अन्य इलाकों में भी कई लोग लापता हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 की मापी गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
1: Welcome to RM2.
0: Musty Mornings. Radio Musty.
1: मैं भी सरफिरा, तू भी सरफिरी, क्या बात है? Good morning. 9:10 हुए हैं. With the amazing song selections. ऊपर से क्या vibe है यार स्टूडियो में. हमारे जो आज है awesome. और ये मौसम क्या बात है. वैसे वेलकम हियर इन योर मस्ती मॉर्निंग, यानी कि मस्ती तो शुरू हो चुकी है. यहाँ पर आई गेट यू सम रियली नाइस सॉन्ग ट्रैक्स जस्ट टू हैव अ वंडरफुल टाइम विद यू ऑल गाइस. वैसे बीट तो आप मेंटेन करते रहो, ऊपर से घर मोड़ी परदेसी आ रहे हैं आपके मूड को भी बरकरार रखने के लिए. वेलकम हियर.
0: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: आदत से मजबूर फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन रिकी वर्सेस लेडी बहल. वैसे ऑल द लेडीज ट्यूनिंग टू आरएन टू रेडियो मस्ती. मैं जानती हूँ घर पर बैठे बैठे कितना कुछ करना पड़ता है. वैसे सोच ही रहे हो कि कैसे टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर द डे गोज ऑन. तो करते रहो बस अपने हाउस के काम के साथ साथ हमको ना भूले. 5491294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार. You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, it's 10 a.m. आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ याचना। नमस्कार आपको।
6: नमस्कार मनीष माँ, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने की दिशा में कल राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को दूसरी पढ़त के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा बजट में घोषित कदमों को लागू करना है। फाइनेंस बिल के तहत 26 कानूनों और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल के तहत 58 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। पूर्व ब्रह्म बैंक के साथ हुई 80 मिलियन रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सुनाई गई सजाओं के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस द्वारा दायर अपील पर 17 मई 2027 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष ने इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन द्वारा चंद्र प्रकाश दीप, मोहम्मद सैफ उल्ला मौलाबख्श और शेख मोहम्मद कदाफी जनी को दी गई सजाओं को चुनौती दी है। वहीं इस मामले में दोषी ठहराए गए धर्मेंद्र मल्लू ने भी अपनी ओर से अपील दायर की है। उनकी अपील पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। दोषियों पर कई जुर्माने लगाए गए थे। अपनी अपील में डीपीपी का कहना है कि इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने कथित मास्टरमाइंड की पहचान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, जबकि आरोपियों की पूरी धोखाधड़ी के मामले में व्यापक भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा SBM होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा जारी कम्युनिके में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सूचित किया गया है कि एक आंतरिक जांच के चलते ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर राहुल क्लोद निकोला शिफ्ले के खिलाफ अनुशासन को लेकर कार्रवाई चलाई जाएगी और इसी दिशा में उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। इस बीच ग्रुप के डेप्यूटी CEO मुनि सिंह जना नायकिनी को एक्टिंग CEO बनाया गया है। स्कॉटलैंड में ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में अभी तक हमारे हमवतन कई प्रतियोगिताओं में उतर चुके हैं और उनका प्रयास अभी जारी है। आज पैरा एथलेटिक्स में नोएमी अल्फोंस 1500 मीटर की रेस में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करेगी। ये प्रतियोगिता आज रात के लिए निर्धारित है। स्पोर्ट्स 11 पर आज रात 10 बजे आप देख पाएंगे। और विदेश में जापान में जोरदार भूकंप के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हैं। कई इलाकों में मलबे बह गए, कई इमारतें ढह गई हैं और मलबे तले कई लोग फंसे रह गए हैं। उन्हें ढूंढ निकालने का प्रयास जारी रखा जा रहा है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 की मापी गई। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। जोसेफ रिविया स्ट्रीट लिकाजेन क्यूपिप में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुपराज नायरू सुकापादू, जो देवराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे सुपराज नायरू जूनियर सुकापादू के मकान जोसेफ रिविया स्ट्रीट लिकाजेन क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शुमेघुइने की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। रारोड पॉम्पलेमुसेज में CEB के पास रारोड पॉम्पलेमुसेज में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्डर की मिसिज बीबी नूरेजा तुगाबली, जो नूरेजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई है। उनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे उनके भाई नौशब तुगाबाली के मकान रारोड पॉम्पलेमुसेज से उठाकर दफनाने के लिए पॉम्पलेमुसेज का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। रारोड क्लिमोसिया में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पालिता बुधू पैदाशी नाम हराक और जो फिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई।

0: गई हैं अर्थी। आज दोपहर 2 बजे उनके मकान रॉयल रोड क्लेमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्दमास्कर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Instagram on the movie Hera Feri. Ladies and gentlemen, welcome here on RM2 Radio Masti. It's the second hour of your Masti mornings with me, Manish Ma. Kaise ho aap? I hope you're having a wonderful time out there. I hope ki aap apne aap aur apne din ko aur aap is playlist ko bhi enjoy kar pa rahe hain. Waise that's a 90s selection is second hour. Kya baat hai? Upar se aapke messages. Thank you so much for all the participation and the good wishes also. You can find me in the
1: club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
0: चलिए सेकंड आवर बहुत कुछ होने वाला है. एक तो गेम है आपके लिए, आपको खुश करने के लिए. और ऊपर से मैसेजेस 5491294 पर भेजते रहिएगा. डेडिकेशन है किसी का जन्मदिन में है. ऊपर से थोड़ी देर में हॉरोस्कोप की टाइम. अभी के लिए जोर मूवी से ये गाना तेरे प्यार में. चलिए थोड़ा सा रोमांटिक फील करवाते हैं आप सभी को. अमेजिंग वेंसडे.

0: tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.
3: सुबह के 10:27 हुए हैं. वैसे अभी के लिए बात करते हैं अबाउट यू नो द फैशन ट्रिप. वैसे क्या बात करें, ठंड के मौसम में चूड़ीदार कभी आउट ऑफ फैशन हो जाता है ना. आज ना ट्राई कीजिए एक रिच वेलवेट या वार्म कॉटन कुर्ता के साथ मैचिंग चूड़ीदार, कंट्रास्ट दुपट्टा या एलिगेंट झुमके के साथ ट्रेडिशनल लुक और भी ग्रेस बना दे सकता है. और अगर बाहर जाना हो तो एक लॉन्ग कोट या एम्ब्रॉयड शॉल ऐड कीजिएगा. देखिएगा ये विंटर लुक कितना स्मार्टली और ब्यूटिफुली हो जाएगा आपके लिए. जी हाँ, विंटर फैशन का गोल्डन रूल यही है कि ले अ स्मार्टली और लुक ब्यूटिफुली. स्टे कज़ी, स्टे फैशनेबल, स्टे ट्यून ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: RM2
2: Radio Musty.
4: Allons chez Lolo.
5: Pour Lolo, ce 17e anniversaire, du lait Omega 1 kg, acheté 10 sachets, gain un spaghetti en cadeau, pour 10, 399 roupies. Saucisse, qu'est-ce qu'une glue, 340 grammes, 37 roupies 95. Tweet, ice cream, 1,8 litres.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मुझे दीवाना में चला गया बात है। 10:35 होने को है अभी के लिए, आपके लिए जीतने का टाइम। Yes, to play with RM2 Radio Musty. जीतिए हमारे साथ 4 एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन ऑफर टू यू बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। Yes, जैन सिटल इंडिया शाही थाली के लिए ये फूड कूपन है। द उत्सव ऑफ इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC फ्रॉम 12th of August 2026 को टिल द 16th of August 2026। वैसे सवाल ये रहा आप सभी के लिए, डेट तो हमने बता दिया, एड्रेस तो आप तो जानती है, SBICCPI में लगने वाला है ये इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल उत्सव, इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल। तो आपको यही बताना है कि ये किस टाइम पर शुरू होता है। सुबह के 10 बजे से खुला रहेगा आपके लिए या फिर 9 बजे, आप बताएगा 9 बजे या 10 बजे खुल जाएगा आपके लिए दरवाजा। 549-9124 पर एवरी डे फ्रॉम द 12th of August टिल द 16th of August एट SBICCPI उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल।

कितने बजे शुरू होगा? सुबह के 9 बजे या 10 बजे बताइएगा ऑन 5491294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ। हम इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टिसिपेशन के लिए।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जी हाँ, ladies and gentlemen, थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल कि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC ये कितने बजे शुरू होगा. डेट तो हमने बता दिया कि 12th ऑफ अगस्त 2026 को टिल द 16th ऑफ अगस्त तो लगने वाला ही है एट SBICC 5. And the right answer is 10 a.m. Of course, not 9 a.m. जल्दी जाओगे तो दरवाजा बंद रहेगा, 10 बजे जाओगे तो खुल जाएगा. जी हाँ, सुबह के 10 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक लड़ेगा आपके लिए. आप एंजॉय कीजिएगा इंटरनेशनल शॉपिंग, होम शॉपिंग के लिए एंटरटेनमेंट शोज होंगे वहाँ पर, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस ऑफ बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैन शो, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल. वैसे ये गेम पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड. हमारे साथ हमारे लकी विनर है, उनका नाम है केविन कुमार. कंग्रेचुलेशंस. जी हाँ, आपको मिल रहे हैं 4 एंट्री टिकट्स, ना कि एक ना कि दो, लेकिन 4 एंट्री टिकट्स ऑफर टू यू बाय राजस्थान वर्क्स. And of course, one food coupon for the chance. Little India Shahi Thali Adi Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI and LIC. Organized by Event Works Limited. Thank you so much for participating. Have a wonderful day ahead. Congratulations again to Kevin Kumar, jo rehte hai Caterbon. You can find
1: me in the club. You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

दिन बेफिक्रे फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम द मूवी बेफिक्रे. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल मॉर्निंग आउट देयर. वैसे थोड़ी देर में In the next hour, यानी कि last hour में 11 से लेकर 12 के बीच last hour, last time for you, last chance to send your messages. नहीं, last नहीं होता. वैसे chance कभी last नहीं होता, second last होती है. You just have to participate and send your messages and your dedications on 54991294 per throughout the day, 24 hours a day. Your entertainment radio station, it's Radio Masti. ये ठीक है guys, see you in the second, actually the last hour.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check. दिन के 11 बजे हैं। सुनते हैं एक बार फिर से संक्षिप्त समाचार आपके साथ याचना। नमस्कार आपको।
5: नमस्कार मनीष मां, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। SBM होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा जारी कम्युनिके में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

0: द्वारा सूचित किया गया है कि एक आंतरिक जांच के चलते ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हाउल क्लोद निकोला जुफ्ले के खिलाफ अनुशासन को लेकर कार्रवाई चलाई जाएगी और इसी दिशा में उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती। इस बीच ग्रुप के डेप्यूटी सीईओ मुनीश सिंह जाना नायकिनी को एक्टिंग सीईओ बनाया गया है। हाल ही में प्रसारित की गई जानकारी के बाद फनपॉक कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देना चाहता है और इसी दिशा में एक कम्युनिके जारी किया गया है। ट्रिबेका में पाए जाने वाले इस फनपॉक के संचालकों ने कहा कि उद्घाटन से पहले सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर दी गई थी। मनोरंजन का बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से फनपॉक ने पॉक की मूल योजना में कुछ बदलाव किए हैं। इस संदर्भ में इन नए बदलावों को शामिल करने और सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट में संशोधन के लिए आवेदन किया गया है। किसी भी समय उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, फिर भी संशोधन परमिट जारी होने तक फनपॉक ने अधिकारियों के सहयोग से अपनी गतिविधियों को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। आज का दिन गुरु को समर्पित गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु ही अपने ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कारों से जीवन को सही दिशा देते हैं। विदेश में जापान के में जोरदार भूकंप के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हैं। वहाँ कई शॉपिंग मॉल्स, कारखाने आदि ढह गए, जिसके मलबे में कई लोग फंसे रह गए हैं। उन्हें जीवित निकालने का प्रयास जारी रखा जा रहा है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। मारी जानी रुस्पेल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम गांधी तोमल जो सुभाष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुपहर 3 बजे उनके बेटे अजय कुमार तोमल के मकान मारी जानी रुस्पेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। रॉयल रोड पॉम्पलमसेज में सीबी के पास रॉयल रोड पॉम्पलमसेज में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के मिसिस बीबी नूरेजा तुराबाली इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11:30 PM उनके भाई नौशब तुराबाली के मकान रॉयल रोड पॉम्पलमसेज से उठाकर दफनाने के लिए इलाके का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 8:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: थोड़ा थोड़ा पिया हटा गया लव आजकल मूवी से लिया गया ये गाना. वेलकम बैक इन द लास्ट आवर ऑफ योर मस्ती मॉर्निंग्स विद मी मनीष ऑफ कोर्स. You can find me in the club,
1: bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: So dedication 549 and 1294. Namaste Manish Maji, Veena here from Nouvelle France. Today is my hubby's birthday. उनका नाम है देव. आज वो 60 years के हुए है. Beautiful, beautiful song. Can you please dedicate it to him? Thank you so much. Have a wonderful day. Happy birthday to you from RM2 Radio. Masti. Good morning. कैसे हो आप मनीष माजी? शो तो मस्त है. Next song from the movie हम तुम. Okay जी अली श्याम जी. Have a great day to you too. आरवी जो टाइप कर रहे हैं लेकिन फिर भी मीठी मीठी चाशनी लिख कर हाँ लिख दिया. Please play beautiful song for you. Thank you. So nice of you. अभी के लिए लेट एक छोटा सा break. Then is birthday dedication coming up.
1: RM2
2: Radio Musti. Alala ki zoli zoli, upa kone ki zoli
1: zoli. Alala ki zoli zoli, King Savers ki zoli. Uniquement chez King Savers, du 24 juillet au 24 août, le promo pack Nestum est à 214,80 €. Le bundle pack Kaolen est à 400.

आज की रात मधुबन बागशी की आवाज में वैसे वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे स्पेशली गोज आउट टू अनुषा फ्रॉम आंटी अमिता एंड मम है विमला एंड सिस्टर निताशा एंड फैमिली वैसे स्पेशल हैप्पी बर्थडे गोज आउट टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे फ्रॉम होल टीम ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती

0: 11:26 हुए हैं, आप सुन रहे हैं RM2 रेडियो। मस्ती वैसी म्यूजिक के साथ साथ थोड़ी सी आवाजाही हो जाती है। हमारे स्टूडियो में कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तो इतनी सारी मुस्कुराहट लेकर आते हैं, इतनी सारी पॉजिटिविटी और गुड एनर्जी के साथ वो हाजिर हो जाती है हमारे साथ। वैसे जो लोग सुनते रहते हैं ना रेडियो के बाहर, और देखना भी चाहते हैं कि कैसा होता है चाल और कैसी हम बात करते हैं, कैसा ये सब कुछ हो जाता है। ये कमाल की बात, ये जैसे मिरेकल हो जाती है ना, कभी कभी एहसास ही नहीं होता है, एक बटन दबा दो और गाना चल पड़ा। ऊपर से मैं अकेली नहीं, मैं स्टूडियो में भरा भरा है हमारा स्टूडियो और बहुत सारे लोग आए हुए हैं फ्रॉम बोसोंज सीनियर सिटीजन। कैन आई हैव अ हेलो?
1: हेलो
0: सी आरएम2 रेडियो बस नमस्ते, वेलकम। पहली बार है आप लोग आए हुए हैं। वैसे इतने सारे लोगों के बीच में दो लोग जो हमारे साथ बात करने वाली हैं, उनका नाम है सबसे पहले जो बैठी है सुबिता जी, नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: हाँ, सुनाई दे रहा है। वैसे ये जो हेडफोन है आप लगा सकती है, अपने आप को सुन भी सकती है। ये हेडफोन है, ये हेडफोन है या जी जी जी जी, आप लगाइए लगाइए लगाइए ऊपर करके। हाँ, कोई मदद करे? यस प्लीज प्लीज प्लीज। तो सुबिता जी कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ।
0: हाँ, सुनाई दे रहा? आप लाइव हो RM2 रेडियो मस्ती पर
2: जी।
0: जी, और साथ में है अंजनी जी।
3: जी नमस्ते जी,
0: कैसे?
3: ठीक हूँ जी।
0: तो हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो कैसा लग रहा था?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो मैंने पूछा था कि आप कितने बजे रेडियो को सुनते हो?
3: 6 बजे से।
0: और दिन में नहीं?
2: दिन के 12 बजे तक, 2 बजे पुराने गाने।
0: अच्छा, तो 2 बजे के बाद देन
3: फिर शाम को
2: आपकी पसंद।
3: 5 बजे से
0: मुझे लगा कि बीच में सो ही जाते हो, कभी कभी अलग हो जाते हो। तो 2 बजे के बाद कहाँ जाती हो शाम को?
2: आपकी पसंद सुनती है।
0: जी जी जी, ओके जी। तो अगर हम कहें कि स्पेशल कौन सा सॉन्ग्स आप सबसे ज्यादा पसंद करती हो, तो
3: जी मैं पुराने गाने पसंद करती हूँ। और मुझे खासकर 70s के 60s के गाने ज्यादा पसंद है
0: जी।
3: और वो लता मंगेशकर जी है, आशा भोसले जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: तो अगर मैं कहूँ कि एक गाना आ रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग हवा के साथ साथ, आप सभी को आता है ये सॉन्ग?
2: आता है,
3: कोशिश करेंगे,
0: कोशिश करते हैं। ऑन माय 3 तो कौन खास रहे, किसको खांसी आ रही है? सब सुनाई दे रहे हैं उन्हें। गुड है, नो वेरी गुड। आप बस साथ में गा भी सकती हो ना। गाना शुरू कर दे। ओके, 3, 2, 1।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटे संग संग, हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग, ओ

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, ओ, ओ, ओ।
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के

0: नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
1: चाची, साक फॉर मूविन को तू गए बों पफ एंड जुरी बिरयानी पुलाव की सा बों जुरी ला सा।
2: अरे बेटी, मो पे सेवी जुरी इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस, सेट एंड जुरी 11-21 एक्स्ट्रा लॉन्ग की पा कासे सो रनमेंट एक्स्ट्रा बों ली एंड नेचुरली एज्ड राइस पा बिजे जे तो सो पफ एला डेपी डन बूट चमे जी मन विन दे मन मो की जुरी सा बेटी वो ला पेन टोल रोड ली सा इंडिया गेट एक्सेल बासमती Rice.
1: Merci, Chachi. Moi aussi, ma pousse à vie. Jury India Gate Excel Basmati Rice.
3: RM2
4: Radio Musti.

0: to Radio Musti.
1: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
0: Welcome to RM2.
1: Musti Mornings Radio Musti.
2: जी हाँ, सोचिए सोचिए कि कौन से हाउस होल्ड एंड डेकोरेशन टिप्स आपके किचन को भी और भी ज़्यादा मज़ेदार बना सकती है, इन्वाइटिंग बना सकती है। जी हाँ, अपने किचन को सुंदर और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए काउंटर टॉप पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखिए। अरे यारो, क्यों इतना कुछ रख दे देते हो? लेकिन क्या होता है कि सब कुछ एक स्पेसिफिक जगह पर रखें तो स्पेस भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना फ्रेश फ्लावर्स या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रख सकते हैं। एक छोटा सा इनडोर प्लांट या खूबसूरत मसाला जार्स, एक किचन इंस्टेंटली फ्रेश और इनवाइटिंग लगता है। जी हाँ, साफ सुथरे और वेल ऑर्गेनाइज किचन न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि कुकिंग को और भी मज़ेदार बना देता है। क्या कहते हो आप? हैप्पी कुकिंग में जानती हूँ ना, खाना बना तो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा टिप हम आपको दे देते हैं। जी हाँ, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय कीजिएगा अपने कुकिंग को और अपने डे को भी। शुभ आहार फॉर ऑल दोज हैविंग देयर लंच राइट नाउ।
3: Pour le, ce 17e anniversaire, du lait Omega 1 kg, acheté 10 sachets, gain un spaghetti en cadeau, pour 10, 399 roupies. Saucisse, qu'est-ce qu'une glu, 340 grammes, 37 roupies, 95. Tweet, ice cream, 1.8 litre, à 204 roupies, 95.
4: Lolo Hypermarché.

पड़ोसन फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. वैसे जाने से पहले बस थोड़े आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं. नमस्ते जी, डेडिकेट नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय मामा शारदा एंड दीदी अनीता फॉर माय फैमिली सुया बिहारी ऑफ कोंगोमा. थैंक यू सो मच. हैप्पी हैप्पी बर्थडे 25th बर्थडे टू माय कजिन यश ऑफ पोर्टलिस फ्रॉम मामा जयश्री पापा कमलेश है दोनों भाई महीर मयूर एंड माई सेल्फ आकाश एटन मनसुख ऑफ बॉम्बू भगवन फैमिली एंड मनसुख फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. हेलो गॉर्जियस, कैसे आप कह रही हो. प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर एंजल वानिया हु इज सेलिब्रेटिंग हर फर्स्ट बर्थडे टुडे. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंजल. आप परी ही बन जाओ हमारे इस दुनिया में. कमिंग फ्रॉम मामा निशा रिशा पापा है विजय नीरज.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे हैं. चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे यासना नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. SBM Holdings Limited द्वारा जारी कम्युनिके में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सूचित किया गया है कि एक आंतरिक जांच के चलते ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर राहुल क्लोद निकोला जुफ्ले के खिलाफ अनुशासन को लेकर कार्रवाई चलाई जाएगी और इसी दिशा में उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है और जब तक की जाँच पूरी नहीं हो जाती वे सस्पेंडेड रहेंगे. इस बीच ग्रुप के डिप्टी CEO मुनी सिंह जानान नाइक किनी को एक्टिंग CEO बनाया गया है. और त्रिबेका के फन पार्क द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें कुछ जानकारियां दी गई हैं. उद्घाटन से पहले सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई थी फिर भी मनोरंजन का बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से फन पार्क ने पार्क की मूल योजना में कुछ बदलाव किए हैं. इस संदर्भ में इन नए बदलावों को शामिल

0: करने और सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट में संशोधन के लिए आवेदन दिया गया है। जब तक नया संशोधित परमिट जारी नहीं होता तब तक फन पार्क की सभी गतिविधियां स्थगित की जा रही हैं, यानी सस्पेंड की जा रही हैं। आज का दिन सभी गुरुओं को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु ही अपने ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कारों से जीवन को सही दिशा देते हैं। इस शुभ अवसर पर शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हैं। विदेश में जापान में जोरदार भूकंप के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए। कुमामोतो इलाके के एक मॉल के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पास के एक कारखाने की चिमनी के गिर जाने से कई लोग नीचे दब गए हैं। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। कांहोश ओहियता में 83 साल की टिफ्री अजोल्ड की श्रीमती आचा माथुमिया, पैदाशी नाम कुनायर कुनंदु और जो देवी उदनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान कांहोश ओहियता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। मारी जानी रोस पेलमी 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम गांधी तोमल जो सुभाष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुपहर 3 बजे उनके बेटे अजय कुमार तोमल के मकान मारी जानी रोस पेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे 3 PM। रॉयल रोड क्लीमोसिया में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पालिता बुधू पैदाशी नाम आगाक और जो फिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान रॉयल रोड क्लीमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2, Radio Mus-

0: रेट्रो रिदम।
1: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का रेट्रो रिदम में विद नन्मणि, जहां हमने खोल दिया है यादों का वो खजाना जिसमें बसी है 70s, 80s और 90s के खूबसूरत मेलोडीज। आज के दो घंटे होंगे रोमांस से भरे, थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ी यादें होंगी और बहुत सारा नॉस्टैल्जिया। वक्त आ गया है रिवाइंड बटन फिर से दबाने का। इट्स योर RM2 रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: दिल धड़कने का बहाना ढूंढ ही लेता है जब उसे कोई खास इंसान मिल जाता है। और अगर आपकी लाइफ में वो इंसान पहले से ही है तो उन्हें बताइएगा जरूर कि वो कितने जरूरी है। और अगर स्पेशल डेडिकेशन करना चाहते हो वो भी सही।

0: 294 पर हमें मैसेजेस भेजने के लिए हेजिटेट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आपके मैसेजेस का इंतजार है. अभी के लिए डेडिकेट करते हैं ये नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल दोज जो अभी कनेक्टेड है आरएमजी रेडियो मस्ती के साथ.
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम2

0: Retro Rhythm.
1: आप इस तरह जिंदगी में शामिल है जैसे खुशबू फूल में बसी होती है, वैसे ही थैंक यू साथ देने के लिए एंड बिग हेलो टू आवर लिसनर्स। रेशमी जी कनेक्टेड है बेलिया से, साथ दे रही है, वो एक्चुअली अभी रसोई में है, वो खाना बना रहे हैं एंड डेडिकेट करना चाहते हैं स्पेशल सा गाना अपने हस्बैंड काविश के लिए जो उनके बेस्ट फ्रेंड भी है। हाउ स्वीट। फ्लैग से वी हैव जना जी जो साथ दे रही है, वाकवा से विश्वानी धूमन जी एंड और भी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ही देर में उनको पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए तेरे जैसा यार कहाँ का गाना डेडिकेट करते हैं टू ऑल दोस जो अभी अपने दोस्त के साथ टाइम बिता रहे हो या फिर ऑफिस में है किसी को यार।

आपके साथ में टाइम कैसे जल्दी बीतती है पता नहीं चलता। आपके लिए बेस्ट मिक्स ऑफ रेट्रो गाने लाते रहेंगे 2 बजे तक। अभी कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: दिन के एक बज रहे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अदिति नमस्कार।
4: नमस्कार नीलरानी, श्रोताओं को भी नमस्कार। सरकार ने बजट 2026-2027 को लागू करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्यसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर दूसरे चरण की बहसें चली। इन दोनों विधेयकों के जरिए टैक्स, सरकारी वित्त, अर्थव्यवस्था और पेंशन से जुड़े बजट कदम लागू किए जाएंगे। इनसे 84 मौजूदा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन सुधार जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा ताकि व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ बने रहे। राष्ट्रसभा में विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड C12 की सफाई को लेकर सवाल उठाया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि निरीक्षण के दौरान वार्ड के भीतर चूहों और कबूतरों का कोई संक्रमण नहीं है। हालांकि परिसर में एक मृत चूहा पाया गया था और खुले रहने पर कभी कभी कबूतर अंदर आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी कदम लागू किए जाएंगे। पूर्व ब्रेम बैंक से जुड़े 80 मिलियन रुपए की धोखाधड़ी मामले में DPP की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई 2027 को सुनवाई करेगा। DPP ने चंद्र प्रकाश सिंह दीप, मोहम्मद सैफ उल्ला मौलाबख्श और

0: और शेख मोहम्मद कदाफी जानी को दी गई सजा को चुनौती दी है। वहीं इस मामले में दोषी ठहराए गए धर्मेंद्र मलू ने भी फैसले के खिलाफ अपील की है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अदालत ने कथित मुख्य साजिशकर्ता पर ज्यादा ध्यान दिया और अन्य आरोपियों की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप में अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। बचाव अभियान लगातार जारी है और राहत दल एक शॉपिंग सेंटर तथा एक पेपर फैक्ट्री के मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी भी 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं और प्रशासन के साथ मिलकर उनकी खोज जारी है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मारी जानी रोजबेल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेम गांधी तोमल जो सुभाष नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री अजय कुमार तोमल की मकान माही जानी रोजवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। सिंगारों स्ट्रीट व्यू ग्रांड पोर्ट में 32 साल की 32 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शक्षा गंदाउरी चितामन, पैदाशी नाम गंदाउरी जो कीर्ति नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके पिता श्री राजेश गंदावी के मकान सिंगाओं स्ट्रीट व्यू ग्रांड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम
1: गजब का है दिन दोस्तों, क्योंकि आज हम मना रहे हैं एक नहीं बल्कि दो खास दिन। सबसे पहले तो आज है रेन डे, एंड वैसे एक सवाल है, आपके यहाँ वेदर मौसम कैसा है? बारिश हो रही है या फिर धूप अपनी अटेंडेंस लगा रही है? हमें जरूर बताइएगा 5499124 पर। एंड वैसे बारिश की एक बात तो माननी पड़ेगी, गर्म चाय पकौड़े और पुराने बॉलीवुड गाने, बस फिर मूड अपने आप रोमांटिक हो ही जाता है। एंड आप सोच रहे होंगे कि दूसरा दिन क्या है, वो मैं कुछ गानों के बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए बारिश वाला गाना हो जाए, क्या पता गाने से बारिश होना शुरू हो जाए। 2 बजे तक इस नैमनी आरएमजे वीडियो मस्ती पर
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: और हम जो रेडियो मस्ती के इस नगर में फिर से स्वागत है आपका, इट्स नर्मनी। और हाँ, आज हम मना रहे हैं रेन डे और दूसरा दिन है इंटरनेशनल टाइगर डे का। बस एक बात का ध्यान रखिए, अगर आज किसी को अचानक जुनून चढ़ जाए और वो टाइगर बनने लगे तो घबराइएगा मत, वो सिर्फ बॉलीवुड का असर होता है। असली टाइगर्स को तो हम जंगल में ही देखना पसंद करेंगे। रवि के लिए जुनून मूवी की दुनिया में वापस चलते हैं उसे एक खूबसूरत गाने को रिवाइव करने के लिए। वो डी से शुरू होता है और ए से खत्म। किसको पता है गाने का नाम, अरे ज्यादा नहीं सताऊंगी। चलिए सुनते हैं साथ में आरएम जो वीडियो मस्ती पर फॉर यू ब्यूटीफुल सॉन्ग
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:40 हुए हैं, नेक आंख मैसेजेस की ओर डालते हैं। गुड आफ्टरनून, आप है सुया बिहारी जी, डेडिकेट करना चाहते हो आप गाना अपनी मम्मी शारदा के लिए, दीदी अनीता के लिए। अब्दुल जी, सारा बानो जी भी कनेक्टेड हो चुके हैं, शमशाद जी भी कनेक्टेड है, और बंधु फैमिली के लिए जो थियोले के रहने वाले हैं उनके लिए गाना मांग रहे हैं स्पेशल वाला। गुडलैंड से शैली जी के डॉटर इन लॉ यशना का बर्थडे है, बेस्ट विशेज उनके बेटे श्रीकांत की तरफ से, हस्बैंड संजय या ग्रैंडसन श्रियान और पूरे जीवन फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट विशेज। और आप है मिस्टर विशाल और करुणा मारुति जी बिलया के रहने वाले, आज आप लोगों का 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू। एंड आज वी हैव आयशा गंगा बिसुन जी का जन्मदिन, बेस्ट विशेज दादा दादी फूफू फूफा भाई तनवीर तेजल रैना रायन मम्मी अनिष्ठा पापा तराश एंड फैमिली ऑफ कैथोबोन। तो ऑल दोज जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, आपके लिए स्पेशल वाला गाना हो जाए।

इसी गाने के साथ टाइम हो चला है मेरे जाने का। याद रखिए, जिंदगी भी बारिश की तरह होती है, कभी हल्की फुहार कभी तेज बारिश, लेकिन हर मौसम अपने साथ एक नई कहानी जरूर लाता है। तो मुस्कुराते रहिए और आलम जो रेडियो के साथ कनेक्टेड रहिए।

अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप इन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस नंबर हमारा वही है 5499124 जहां पर मैं करूंगी आपका इंतजार

सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए इट्स क्वेश्चन टाइम, जहां पर हम खेल रहे हैं एक गेम. सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं इनाम. इनाम में आपको बता दिया दैट खेले आप एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस. स्टैंड चांस टू विन 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेंस लिटिल इंडिया शाही थाली, जो होने वाला है एट उत्सव लिटिल इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. यस, उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल और पावर्ड बाय SBI एंड LIC 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट SBICCPI सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. और यहां पर इनाम जीतने के लिए क्वेश्चन वेरी सिंपल. अगला गाना आपके लिए हम चलाएंगे, फिल्म है धुरंधर. आपको हमें बस उस सिंगर का नाम बताना है. वैसे तो काफी टाइम से हम इस गाने को प्रमोट करते आ रहे हैं और काफी बातें भी होती है इस गाने को लेकर. सो बस गाने को सुनिए और हमें बताएं कि ये कौन से सिंगर ने गाया है. एंड सेंड अस योर राइट आंसर्स 54991294 पर अपने पूरे नाम और पते के साथ. अगर आपका पूरा नाम नहीं होगा, आपका पता नहीं होगा, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. सो फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ ड्रॉप इन आपके सही जवाब ऑन 54991294. अगला गाना सुनिए और हमें बताएं कि ये सिंगर कौन है. वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स एंड ये गाना आपके लिए.

चलिए सर, धुरंधर फिल्म का ये गाना नहीं है लेकिन बिल्कुल इट्स टेकन फ्रॉम दादी की शादी. और सर क्वेश्चन वही है कि आपको हमें बताना है कि ये सिंगर कौन है, वेरी फेमस वॉइस. बस ड्रॉप इन आपके सही जवाब. ये जो मेल सिंगर है उनकी आवाज़ आपको पहचाननी है और सही जवाब हम तक पहुँचाने हैं. फ्रॉम द फिल्म दादी की शादी वी हैव दिस गाना. एंजॉय दिस वन एंड ड्रॉप इन आपके सही जवाब 5499 1294 पर.

0: Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सुनो ना दिल, बिल्कुल ये गाना आपको सुनाया, दादी की शादी फिल्म का ये गाना, और आपको पहचानना था सिंगर को। वैसे तो सुनिधि चौहान थी, लेकिन मेल सिंगर कौन थे? यस, द राइट आंसर इज सोनू निगम। और यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब, और बहुत सारे सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गए हमारे लकी विनर। आप है संध्या जगरू फ्लोरियाल से, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वेल संध्या जी, आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, खेला एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ, और जीता है आपने कुछ खास, जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं एट उत्सव इंडिया शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12th अगस्त से लेकर 16th अगस्त 2026 तक एट एसबीआईसीसी पाए, सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक। साथ ही आपको बता दें कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है खास, इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल है, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर ये है धर्मेश सर, कैनमा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगने वाले हैं, और फूड फेस्टिवल आप एंजॉय कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। सो वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, हमारी सिंगर को आपने बिल्कुल सही पहचाना, आप है संध्या जगरू ऑफ फ्लोरियाल, सही जवाब सोनू निगम, और जीत गई ये शानदार। वैसे जीतने के मौके और भी मिलेंगे, और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आपको कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। साथ देते रहिए ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सवाल यहाँ पर हमें मिल गए हमारे लकी विनर जिन्होंने दिया सही जवाब, संध्या जी। सो आपको आना होगा MBC मंडे टू फ्राइडे, आप यहाँ पर आ सकते हैं सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक। डू ब्रिंग योर ID अलोंग और अपना इनाम आप ले जाएं। एंड वंस अगेन कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीतने के मौके मिलते रहेंगे आपको ऑन RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए इट्स म्यूजिक टाइम, जहाँ पर लेटेस्ट सॉन्ग्स एंड बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकी, साथ रहेगा आपका और मेरा यानी कि परी का 4 PM। चलिए मूड को सेट करते हैं गुरु रंधावा, हीर की आवाजें। एंजॉय दिस वन।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना हमें जब से मोहब्बत हो गई है, दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। और दोस्तों, वैसे तो हम कहते हैं कि हर एक गाना खास होता है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी कहानी बयां कर जाते हैं। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए। और बात करते हैं अपकमिंग फिल्म रामायण, इसको लेकर दर्शकों का उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म के मेकर्स ने इसके ट्रेलर को लेकर बड़ी अपडेट दी है और खबर है कि रामायण का ट्रेलर 30th of July को भारतीय समय अनुसार सुबह 4:15 पर रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि मेकर्स ब्रह्म मुहूर्त पर रिलीज करने वाले हैं इस ट्रेलर को। खबर यह भी है कि कल रिलीज हो रही हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ रामायण का जो ट्रेलर है उसे अटैच किया जाएगा। और इससे पहले ट्रेलर 24th July को रिलीज होने वाला था, हालांकि बाद में मेकर्स ने इसे टाल दिया और रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के ट्रेलर की रिलीज की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि शुभ ब्रह्म मुहूर्त में हम 30th July 2026 गुरुवार को सुबह 4:15

0: मिनट पर दुनिया भर में अपने ट्रेलर के साथ रामायण के आगमन का स्वागत करेंगे। साथ ही मल्होत्रा ने बयान में कहा है कि आज हमारी रामायण के लिए बहुत खास पल है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी पार्टनरशिप से रामायण को दुनिया भर तक ले जाने का मेरा सपना अब सच हो रहा है और इसे देखते हुए हम अपना ट्रेलर बाद में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करेंगे। मेकर्स के मुताबिक इस ट्रेलर को एक साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित कई और भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। सभी के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है रामायण फिल्म का। और यस, ये फिल्म जो है वो दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है इन 2026। लेकिन 30th of July इज द डे जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। सो वेल दोस्तों, बी राउंड की खबरें तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फॉर नाउ इट्स टाइम कि हम ले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, लौट कर आएंगे विद सम मोर अपडेट्स एंड विद सम मोर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। परी का साथ अंदाज से बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2 Radio Musti.
2: Allons chez Lolo.
3: Pour Lolo, ce 17e anniversaire. Du lait Omega 1 kg. Acheter 10 sachets, gain un spaghetti en cadeau. Pour 10, 399 roupies. Saucisse, qu'est-ce qu'il nous glue? 340 grammes, 37 roupies 95. Tweet, ice cream, 1.8 litres.

0: रेडियो मस्ती
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो।

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Mesti, your number one Bollywood station.
1: धुरंधर फिल्म का रोमांटिक गाना हो या फिर पेपी सॉन्ग, हर एक गाना रहा पॉपुलर। चलिए इसी गाने के साथ दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, लौट कर आएंगे विद सम मोर बॉलीवुड अपडेट्स एंड सम मोर लेटेस्ट सॉन्ग्स। फॉर नाउ टू गेट यू इन द मूड वी हैव दिस वन, साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती।

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. सुपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ये बढ़कर 5.9 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 4.8 बिलियन रुपए था. सबसे अधिक निवेश रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है. फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख निवेशक देशों में शामिल. वहीं मॉरिशस की ओर से विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे पता चलता है कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है. पानी और सीवरेज सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली नॉन डोमेस्टिक ग्राहकों को जल्द ही ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा. शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया था. सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में नए योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया जाएगा. मॉरिशस में कंपनियों के बीच AI के इस्तेमाल को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है. ये पहल मॉरिशस चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तम और केप फॉर मॉरिशस ने मिलकर शुरू की है. इस अध्ययन के जरिए ये जानना जाएगा कि स्थानीय कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना और किस तरह उपयोग कर रही है. अध्ययन के नतीजों के आधार पर ट्रेनिंग और सहयोग की नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकी. गुरु पूर्णिमा आज देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है. ये दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उनके मार्गदर्शन को नमन करने का अवसर है. मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है. वहीं श्रद्धालु अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं. भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु को ज्ञान, संसार और सही मार्ग दिखाने वाला माना जाता है. कॉमनवेल्थ पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मॉरिशस के दोनों खिलाड़ियों ने लॉन्ग जंप की T20 रेस के फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया. एडी एकब्दो ने 5.93 मीटर की छलांग के साथ पांचवा स्थान हासिल किया, जबकि डोनोवन गबाई ने 5.71 मीटर के साथ छठे स्थान पर वो रहा है. प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल मलेशिया के अब्दुल रोमली ने जीता. विदेश स्तर पर फ्रांस में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार अभियान चला रहे हैं. हालांकि कई इलाकों में आग फिर से भड़क उठी है और अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं. नए हीट वेव के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है. वहीं स्पेन में भी भीषण गर्मी और जंगल की आग का खतरा बना हुआ है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. रॉयल रोड प्लेन दी रोश में 82

0: येजोल के श्री राम दत्त सुमका की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके बेटे दोमन सुमका के मकान रॉयल रोड प्लेंदेहोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। जागृति रोड सत्यामिल्त्रियोलोमी 69 साल की 69 साल की जानकी गोकुला की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पुनुसोमी, लोग उन्हें सोनी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उनके बेटे सुरेंद्र गोकुला के मकान थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.

रेडियो मस्ती। तो चलिए दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका चांद देख लेना मातृभूमि फिल्म, जिसका हो रहा है बेसब्री से इंतजार। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन पता नहीं ये फिल्म कब रिलीज होगी। सलमान खान के फैंस कर रहे हैं इसका इंतजार, लेकिन अभी के लिए भी वी डोंट नो दैट ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है। लेकिन गाने तो हम आपके लिए चला सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, वेरी रोमांटिक गाना चांद देख लेना। और उसके बाद अब मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यस, मैं और तू, ये गाना हम डेडिकेट करना

करना चाहेंगे हमारे और आपके लिए फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. आफ्टरनून टाइम है और वेनसडे यानी कि मिड वीक तक हम पहुंच गए हैं. टू डेज मोर टू गो, उसके बाद वीकेंड करने वाला है आपका गर्म जोशी से स्वागत. बट फॉर नाउ हम आपका कर रहे हैं स्वागत ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. चलिए दोस्तों, बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाएंगे विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स एंड शामिल होता हुआ ये गाना फॉर ऑल द लिसनर्स.

0: RM2 Radio Musty.
1: Bombay Talkies
2: Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: जाते हुए लम्हों और इसी गाने के साथ हम तो आ गए हैं आपके लिए बी टाउन की खबरें लेकर। चलिए दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की दिग्गज सदाबहार एक्ट्रेस रेखा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होगी। यहां उन्हें सिनेमा में बेहतरीन काम के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फेस्टिवल में रेखा के शानदार काम और भारतीय सिनेमा में योगदान का जश्न भी मनाया जाएगा। इसके तहत उनकी फिल्म उमराव जान की स्क्रीनिंग होगी और रेखा ने भारतीय सिनेमा में सिलसिला खूबसूरत इजाजत, घर, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और कोई मिल गया जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों से उनके काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, उनकी डांसिंग स्किल्स को पसंद करते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में फिल्म उमराव जान दिखाई जाएगी और मुजफ्फर अली द्वारा डायरेक्टेड उमराव जान रेखा के करियर की सबसे शानदार फिल्मों में शामिल है। इस साल इसकी रिलीज के 45 इयर्स भी पूरे हो रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही सम्मान की बात है जहाँ पर रेखा को सम्मानित भी किया जाएगा, उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग भी की जाएगी और ये होने वाला है इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए तो हमारी सदाबहार एक्ट्रेस रेखा उनके फैंस हो गए हैं हैप्पी हैप्पी एंड आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए आपके लिए भी खुश खबर ये है दैट टॉक्सिक फिल्म जो देखना चाहते हैं, टॉक्सिक होना नहीं है लेकिन टॉक्सिक फिल्म, इस फिल्म का कब से हो रहा था इंतजार, फाइनली ये फिल्म 26th ऑफ अगस्त को रिलीज हो रही है और यश के जो फैंस है या फिर कियारा अडवाणी के जो फैंस है वो उन्हें देख सकते हैं ऑन 26th ऑफ अगस्त। यस, बड़े पर्दे पर ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑन 26th ऑफ अगस्त। तब तक के लिए उसी फिल्म का ये गाना जो मचा रहा है तहलका, एंजॉय दिस वन। सभी हमारे लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, गुड म्यूजिक आपके लिए एंड लेटेस्ट ट्रैक्स आप तक पहुंचा रहे हैं। That's Tabahi from the film Toxic, Raj Shekhar, Vishal Mishra aur Oh My God, What a Song. And isi song ke baad ab jo intezaar hai thoda sa aur badh gaya hai ki bhai ye film kab release ho, kab is film ki story samne aaye, kab ye jo actors hai unhe hum dekh paaye. So iske liye ab intezaar karna hai till 26th of August release ho rahi hai Toxic. For now we have this Tabahi gana, enjoy this one.

So well, that was the Tawahi song. आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं और साथ ही यहाँ पर आपके messages, dedications भी आप पहुँचा सकते हैं on 5499-1294. And well, friends, 3:32 हो चुके हैं और आज है special day, 29th of July. आज Mr. Sunil Dutt अपना birthday celebrate कर रहे हैं और उनके लिए happy birthday wishes coming from wife Devyani, उनके बेटे नील, बहु है शिवानी और उनके friend Ghiza and सभी friends and family listening right now उन्हें wish करना चाहते हैं very happy birthday. So 29th of July अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं मिस्टर सुनील दत्त और इसी दिन जो भी लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं गुड विशेस कमिंग फ्रॉम ऑल योर लव्ड वंस.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: It's 3:53 and it's time to read out aapke messages, aapke dedications. Well, yahan par Mr. Rajiv Danudari hamara saath de rahe hain Plan the Papaya se aur kehte hain agla gana aap dedicate karna chahte hain pyari patni Jyoti ke naam, beti hai Kusum, beta Sahil aur pota Shivesh, sabhi ke liye bheja hai pyar and good wishes. To chaliye, on this Wednesday afternoon aapke pure parivar ke naam, we are dedicating a beautiful song. Davisen saath de rahe hain aap Lal Mati se, so agla gana hoga aapke naam. And यहाँ पर हमारी प्यारी सी विजया जी हमारा साथ दे रही हैं. ओके, आई गॉट योर आंसर, लेकिन थोड़ा सा देर से मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. और जीतने के मौके मिलेंगे आपको, बस अभी के लिए आपका पार्टिसिपेशन मायने रखता है और आपका साथ मायने रखता है. सो थैंक यू विजया जी एंड गेट वेल सून विशेज आपके लिए. और कोशिश करेंगे कि गानों के साथ आपके मूड को हम सेट रखें. यहाँ पर अगला गाना अब्दुल अंसारा बानू हमारा साथ दे रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं गाना आप सभी के लिए. एंड कहते हैं काफ़ी दिनों से ये गाना नहीं सुना था, बस ये गानों को एंजॉय कर रही हूँ और आप का साथ दे रही हूँ. दैट्स कमिंग फ्रॉम रोशनी. ओके रोशनी, थैंक यू जी, गाना सुनकर आप हो गई हैप्पी, सो हमें भी खुशी हुई दैट यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स. डेडिकेटिंग गाना फॉर लवली अवनी एंड क्यूट वंश, जो अपनी नानी के वहाँ पर है, नानी फिदू, और अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं. और ये है फ्रॉम दादी सुया, उनके लिए भेजा है बहुत सारा प्यार. साथ ही हैप्पी बर्थडे विशेज ये है शिवाय एंड दैट्स कमिंग from my sister Minky, उनके भाई युवीश, सभी की ओर से special wishes. पेरिस से हमारा साथ दे रही हैं सुप्ति रघुनाथ और अपने भाई तन रघुनाथ के लिए आप एक बर्थडे सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हैं. सो विल हैव अ वंडरफुल सॉन्ग, बर्थडे गाना हम थोड़ी देर में ज़रूर चलाएंगे. और आज उनका 65th बर्थडे है. सभी रघुनाथ परिवार मौसल मौसम तौंद्रे से उनके लिए स्पेशल विशेज. पत्नी इंदिरा है, बेटा राहुल, छोटा बेटा हेमंत जो इस वक्त एम्स्टरडैम में है, और सभी परिवार की ओर से आ रही हैं स्पेशल विशेस ऑन हिज स्पेशल डे. ललिता जी आप भी साथ दे रही हैं, घर पर हैं, एंजॉयिंग द सॉन्ग. सभी जीतन परिवार को याद कर रही हैं, गाना होगा आप सभी के नाम. और चलिए अभी के लिए यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड जितने भी लिसनर्स हैं, थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया. छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग.

चलिए दोस्तों परी साइनिंग ऑफ, मेरे बाद आ रही है गिनिशा लेकर योर अवतार वाइब्स। मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti. The Musti.
5: Check your time. It's exactly 4 p.m. आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार. 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में 22% की बढ़ोतरी. ये बढ़कर 5.9 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 4.8 बिलियन रुपए था. सबसे अधिक निवेश रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है. फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख निवेशक देशों में शामिल है. वहीं मॉरिशस की ओर से विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे पता चलता है कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है. पानी और सीवरेज सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली नॉन डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को जल्द ही ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया. सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में नए योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया जाएगा. मॉरिशस में कंपनियों के बीच AI के इस्तेमाल को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है. इसके जरिए ये जाना जाएगा कि स्थानीय कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना और किस तरह उपयोग कर रही हैं. अध्ययन के नतीजे के आधार पर ट्रेनिंग और सहयोग की नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके. गुरु पूर्णिमा आज देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है. ये दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उनके मार्गदर्शन को नमन करने का अवसर है. मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है. वहीं श्रद्धालु अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं. भारतीय परम्परा में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु को ज्ञान, संस्कार और सही मार्ग दिखाने वाला माना जाता है. फ्रांस में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं. कई इलाकों में आग

0: फिर से भड़क उठी है और स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं। नए हीट वेव के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं स्पेन में भी भीषण गर्मी और जंगल की आग का खतरा बना हुआ है, जहां पिछले एक हफ्ते में 70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2. RM2, Radio Masti.

बिल्कुल जी, ना होश रहते हैं ना खबर है, क्योंकि हम आ जाते हैं आप लोगों के साथ, हाँ जी, इन योर रफ्तार वाइब्स टू हैव सच अ लवली टाइम है। जी हाँ दोस्तों, रफ्तार वाइब्स एंड दैट्स योर फिल्मी राइट, जहाँ पे गिनिश आ गई है साथ देने के लिए रात के 7 बजे तक। सो विशिंग ऑल ऑफ योर वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी और गिनिशा का प्रणाम। ऑलरेडी वन इज 29 ऑफ जुलाई 2026, ऑल दोस वर सेलिब्रेटिंग द बर्थडेज टुडे, आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द एंटायर शो आप लोगों के नाम। सो माय डियर लवली लिसनर्स, अगर आप ऑफिस से निकल चुके हैं, ओ यू आर जस्ट रैपिंग अप ऑल योर फाइल्स टू गो बैक होम, तो जस्ट टू लेट यू नो, आई विल बी हियर टू गिव यू वन ऑफ द लवलीस्ट कंपनीज, बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही धमाकेदार म्यूजिक के साथ। ऑफ कोर्स यू आर नॉट ड्राइविंग अलोन, आई कैन बी हियर टू गिव यू वन ऑफ द लवलीस्ट एंड बेस्ट कंपनी। तो चले जी, इन योर रफ्तार वाइब्स एंड योर फिल्मी राइट्स, हम आपको लेके चलेंगे बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम लेटेस्ट बॉलीवुड गाने एंड एज वेल सम ट्रैफिक अपडेट्स। और ऑफ कोर्स टुडे आई गॉट यू सम गिफ्ट्स, यस यू बी हैविंग वन, नहीं दो दो गेम है हमारे पास आप के लिए इन दिस ब्यूटीफुल शो, जहां पे आप जीत पाएंगे बहुत सारे गिफ्ट। एक तो है एक वाउचर वर्थ 500 रुपीज

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और M2.
2: प्यार में तो मुझे नहीं पता, लेकिन गानों का सिलेक्शन जो हम लेकर आते हैं उसमें तो आप पागल हो ही जाएंगे। हम तो खुद होते हैं, या जब भी हम ऐसे खूबसूरत गाने लेकर आते हैं ना आप लोगों के लिए, खुद हम नाचते हैं और यही तो उम्मीद करते हैं कि नचा भी पाए आप सभी लोगों को। सो थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। ऑन ऑन टू रेडियो मस्ती, 4:15 समाचार तो बज चुके हैं, टाइम इट ने जल्दी जल्दी से बीटा चला जा रहा है और फिलहाल के लिए इट्स टाइम टू बिगिन अ गेम। जी हाँ, आई हैव गॉट यू वन गेम राइट नाउ, सो प्ले विद MBC एंड राजस्थान वर्क्स लिमिटेड एंड विन एक्साइटिंग प्राइसेस। जी हाँ दोस्तों, आप अभी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू बी माय लकी विनर। सो इट्स देन अ चांस टू विन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन चार एंट्री टिकट्स एंड वन फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। और ये शुरू होने वाला है फ्रॉम द 12th of August टिल द 16th of August 2026 और वो है एट SBICCRPI एंड इट्स स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग 10 AM टिल लेट नाइट शॉपिंग 9 PM। और वहां पे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे 5 days ऑफ शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड इवन फैमिली फन फीचरिंग इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, लाइव परफॉर्मेंसेस बाय इंडियन आइडल जो हैं, सिंगर जो हैं आया है इंडिया से परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैनवा शो, ब्लड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल, ये सब अंडर जस्ट वन रूफ। और फिलहाल के लिए यू कैन जस्ट विन अ टिकट बाय पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल, आपको सही जवाब देना है ऑन 5499124 पर 5 99 12 94। सेंड मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ, देन ओनली यू गोना बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम। तो चलिए जी, आपको सुनाएंगे एक डायलॉग, आपको बस पहचानना है कि ये कौन से एक्टर, कौन से कॉमेडियन की आवाज है।
3: हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी?
2: आपको बस पहचानना है और हमें बताना है कि ये कौन से एक्टर की आवाज है। इज अ कॉमेडियन, वेल नोन कॉमेडियन, सभी लोग जो है उनको जानते हैं, पहचानते हैं। और अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, पहचाना नहीं, सो फिर से एक बार आपको सुनाती हूँ।
3: हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी?
2: तो चलिए जी, 5499124 पर जो सेंड मी योर राइट आंसर। जी हाँ, 5 99 12 94 एंड ऑफ कोर्स विद योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ यू विल बी पार्टिसिपेटिंग टू विन 4 entry tickets एंड 1 food coupon फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली जो होने वाला है एट उत्सव इंडिया शॉपिंग कार्निवल जो है from the 12th of August till the 16th of August at SVICC at PAI. Yeah. So, best of luck to you, my dear.
4: Set your day, every single day. Best mix of music, radio musti sundera hai.
5: RM2, radio musti.

0: बिल्कुल जी, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन जहां पे गिनीशा साथ दे रही हैं। दैट्स योर रफ्तार वाइब्स जहां पे हम आपको लेके जाते हैं एवरी आफ्टरनून ऑन योर फिल्मी राइट्स ऑफ कोर्स। एंड आई होप कि हर गाने जो है आपके दिल को अच्छा लग रहा है। यू आर सिंगिंग एंड लविंग एंड एंजॉयिंग ईच एंड एवरी वाइब जो हम आप तक पहुंचा रही है। आई नो इट्स वेडनेसडे मिड वीक है एंड हो सकता है कि मूड काफी खिला खिला ना हो या फीलिंग अभी टायर्ड हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट स्टिल वी आर हियर टू पंप अप अ लिटिल बिट योर लवली मूड। तो चलिए जी, नाउ ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। और स्पेशली जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, यू मस्ट बी वेटिंग कि अभी गिनी सुनाएगी ना कि कौन है आज का लकी विनर। सो वी आर हैविंग अ लवली गेम हैपनिंग राइट नाउ ऑन आवर टू रेडियो मस्ती, जहां पे पार्टिसिपेट करने पर अगर आपका नंबर निकल आता है इन द लकी ड्रॉ, यू आर द लकी विनर। यू कैन गो अवे विद 5 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली आदि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC आज फ्रॉम द 12th of August 2026 टू 16th of August। और ये होने वाला है एट SBICCRPI सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। सो इट्स एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। सो जस्ट टू लेट यू नो, ये जो मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल है आपके लिए, वी हैव दिस लवली गेम। सो राजस्थान वर्क्स लिमिटेड इज गिविंग यू दिस टिकट। और जी हाँ, हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल, एक डायलॉग आपको सुनाया और हमने बोला कि यू जस्ट हैव टू टेल मी कि ये कौन से एक्टर, कौन से कॉमेडियन की आवाज है। दैट वॉज द क्वेश्चन।
1: हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी?
0: ओ माय गॉड, अभी जिनको ये टिकट मिलने वाले हैं वो आ नहीं करेगा, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि द राइट आंसर इज राजपाल यादव। जी हाँ, बहुत सारे लोगों, एक्चुअली सभी लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे और बोला है कि ये है हमारा राजपाल यादव छोटू। बिल्कुल सर, राजपाल यादव की आवाज है ये द राइट आंसर। और आज के लकी ड्रॉ में किसका नाम निकल आया है, लेट्स चेक इट आउट। आप हो शिबानी टिमाडू और रहते हैं मुसलमान सैतोतवान गुडलैंड्स। Congratulations to you, my beautiful. You are winning 4 entry tickets and 1 food coupon for the Giants Little India Shahi Thali at the Utsav India Marusha Shopping Carnival. So congratulations to you, my dear. There will be someone calling you from the embassy to let you know aap apne ticket kab kaise collect kar sakte hai with your ID card, of course. So thank you so much for participating. Aur baaki jo hamare listeners hame sun rahe hain, jo soch rahe ki oye hoy humne to kuch bhi nahi jeeta, aap dil chota na kijiye, kyunki abhi thodi der baad I'll be having another game for you, my dear, jahan pe you'll be able to win a voucher worth 500 rupees offered to you by Indian Swad Restaurant. So stay tuned and stay connected.
2: RM2 Radio Masti.

0: जितने भी हमारे प्यारे प्यारे ड्राइवर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हम तो बस इतना कहेंगे ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, बट कीप ऑन लिसनिंग टू गुड गुड म्यूजिक। अच्छा, अगर कम सुनाई दे रहे हैं तो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, स्पेशली दोज बस ड्राइवर्स। जी हाँ, बस में इतने पैसेंजर्स जो बैठे हैं उनको भी तो सुनना चाहिए कि ऑन रेडियो मस्ती वी आर हैविंग द बेस्ट प्लेलिस्ट फॉर देम। सो बिग हाय, अ बिग शाउट आउट फॉर ऑल ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स एंड पैसेंजर्स जो साथ दे रहे हैं, इवन टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स जो मेट्रो में बैठे हैं, जो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं से भी अगर मेरी जान आप हमारा साथ दे रहे हैं, सो बिग शाउट आउट फॉर यू माय डियर। सो दोस्तों, जिंदगी भी एक सफर है और रोड भी, तो दोनों जगह जल्दी से ज्यादा जरूरी है सेफली पहुंचना लाइफ में। स्माइल के साथ ड्राइव कीजिए, पेशेंस रखिए और हर जर्नी को एंजॉय कीजिए। रेडियो मस्ती के साथ सफर बनाइए और भी मजेदार। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज, और थोड़ी देर बाद आवर स्पोर्ट्स गुरु इज गोना बी हियर विद हिज लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Join the RM2 team this Saturday 1st of August at the Blue Bay Beach Arena for the Family Sports and Leisure Day organized by the Tourism Employees Welfare Fund in collaboration with the Mauritius Recreation Council. RM2 will be live from 10 a.m. to noon, so don't miss out. RM2
2: Radio Musti.
3: Raftar Vibes. Filmy Rides.
1: RM2

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
3: स्पोर्ट्स न्यूज
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स
5: कुछ महीने तो पहले हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि आने वाले हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु और आगे लियो जी आपका नाम लिया और आप हाजिर हो गए सो आपका स्वागत है ऑन आवर M2 रेडियो मस्ती ऑफ कोर्स विद योर लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़
6: थैंक यू सो मच मैं बोलूं जब मैं आया तो मैंने क्या कहा
5: टॉकिंग अबाउट द डेविल एंड डेविल इज लेकिन डेविल मत बोलो भाई आप डेविल नहीं हो आप डेयर डेविल्स के नहीं यू डोंट फॉलो देम ना डेयर डेविल्स
6: व्हाई नॉट
5: ओके
6: जब तक क्रिकेट है सो अभी थोड़ी देर में क्रिकेट में बात करेंगे अबाउट क्रिकेट फिलहाल अभी MBC 11 पर लाइव आ रहा है द बास्केटबॉल मैच ऑस्ट्रेलिया और जमैका के बीच ये बास्केटबॉल 3x3 होता है नॉट नॉर्मल टाइप ऑफ बास्केटबॉल इसके बाद अभी से कुछ हाफ एन आवर आधे घंटे बाद मेवेक्लेया रिंग पे उतरेगा फॉर द सेमीफाइनल और
5: बॉक्सिंग में दे आर डूइंग क्वाइट वेरी गुड एमोरिशस
6: फॉर द क्वार्टर फाइनल के लिए जब अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होता है द फर्स्ट मेडल पक्का मॉरिशस के लिए गाना के मुक्केबाज के खिलाफ आज ये मैच है सो मेवेक्लेया उसका अनुभव है ही कैन डू समथिंग और आज ही 800 मीटर में भी और साथ साथ में पैरा एथलेटिक्स में भी हमारे एथलीट होंगे लेट्स होप फॉर समथिंग अभी के लिए एज यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया डूइंग सो वेल ऑस्ट्रेलिया की टीम हैव वन ऑलरेडी 35 गोल्ड मेडल्स टोटल 80 कनाडा 13 गोल्ड मेडल टोटल 35 इंग्लैंड 10 गोल्ड मेडल्स टोटल 44 स्कॉटलैंड जो अपने होम मैदान में है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स दे हैव वन 7 गोल्ड मेडल्स और इधर इंडिया 2 गोल्ड मेडल मॉरिशस येट टू विन वन व्हाई नॉट आज ही इससे शुरू करें और जैसे आपको बताया आज के लिए वी हैव व्हाट बॉल्स एंड पैरा बॉल्स वेट लिफ्टिंग एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग फिर अभी एज यू कैन सी 3x3 बास्केटबॉल एंड 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल इसके बाद बॉक्सिंग 7 क्वार्टर फाइनल्स जिनमें से एक दे ऑलरेडी देयर बॉक्सिंग शुरू होने जा रहा है तो इंडिया का एक मुक्केबाज है लेट्स चेक इससे उम्मीद है मेडल जीतने के लिए सो अभी से इस क्वार्टर फाइनल में जो भी अपना मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए जाएगा और एक मेडल पक्का है सो राइट नाउ इट्स द बॉक्सिंग चैंपियनशिप बॉक्सिंग जिसमें स्टार्ट

थिंग विद इंडिया और थोड़ी देर बाद हमारे हमारा महवैक ले आएगा विल बी फॉलोइंग दैट एज वेल. ये कौन है? ये बोत्सवाना का है. ट्रेजर मुरेमी विल बी अगेंस्ट, लेट्स चेक द सेकंड वन, इंडिया सचिन सचिन, क्या नाम है यार, सचिन सचिन, इसका नाम है सचिन सचिन. इंडियन फैंस भी वहां पर हैं ग्लासगो में. तो ये पहला क्वार्टर फाइनल दैट्स देयर. उसके बाद नेटबॉल का मैच है, जमैका वर्सेस स्कॉटलैंड, फिर इंग्लैंड वर्सेस टोंगा, और बॉल्स पैराबॉल्स भी रात्रि को फाइनल है फॉर द 3x3 बास्केटबॉल गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल मैचेस. बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल जारी रखे जाएंगे और विल बी हैविंग वेट लिफ्टिंग वीमेन्स 86 किलोग्राम फाइनल, एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स 8 फाइनल है आज, स्विमिंग और पैरा स्विमिंग 11 फाइनल्स. सो आज भी काफी मेडल जीते जाएंगे. विल वेट फॉर द फर्स्ट मेडल जो मॉरिशस के नाम आज लग सकता है. ऑल द बेस्ट टू आवर टीम. इधर फीफा जो अपना कुछ कंट्रोवर्शियल प्लान जो लाना चाहते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, उसके प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फांटिनो ने कहा कि जो 211 मेंबर एसोसिएशंस हैं दे विल रिसीव 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग अगर वो उनके प्लान को सपोर्ट करेंगे. प्लान यू है कि वे लोग दे विल सेल ऑफ स्टेक्स इन इट्स मेजर कॉम्पिटिशन. तो थोड़ा कमर्शियल हो रहे हैं और इन्फांटिनो ने कहा कि 19 सितंबर से फुटबॉल फेडरेशन इस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे तो दे विल गेट एन एक्सेस टू ए इनिशियल 15 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. 211 मेंबर एसोसिएशन, इसमें मॉरिशस भी है. सो लेट्स सी क्या होगा, पैसों के बल पर अपना कंट्रोवर्शियल प्लान ला पाएगा या नहीं. इधर फीफा के इस प्लान पर एफए ने कहा कि दे आर डीपली कंसर्न क्योंकि यूईएफए अभी मीटिंग प्लान कर रही है. कुछ ट्रांसफर न्यूज. हेंडरसन एग्री हो गया है जॉर्डन हेंडरसन चेल्सी में जाने के लिए. डैनी वेलबेक भी लगभग. सो हेंडरसन 36 2027 तक उसका कंट्रैक्ट है लेकिन चेल्सी उसको लेना चाहता है और वो चाहता है कि वो प्री सीजन ज्वाइन कर ले चेल्सी के साथ और टोटनहम हॉटस्पर के खिलाफ जो मैच है इन ऑस्ट्रेलिया वहां पर ये खेल पाएगा. वेलबेक वो कितने में आएगा? आई थिंक इट्स ए फ्री एजेंट है, फ्री एजेंट. तो आजकल खिलाड़ियों को काफ़ी पैसे मिल रहे हैं और कुछ ऐसे ही मुफ्त में जा रहे हैं अपनी दूसरी टीम के लिए खेलने के लिए. कुछ रिजल्ट्स भी आपको दे दें. कुछ मैचों के फिक्स्चर्स जो आज खेले जाएंगे, विल बी हैविंग द सिडनी सुपर कप जो आज पूरा हुआ जिसमें स्पेन स्पर्स यानी टोटनहम हॉटस्पर ने सिडनी के खिलाफ मैच ड्रॉ किया. गोल स्कोर किया टोटनहम हॉटस्पर के लिए टेल ने और उधर सिडनी के लिए सकीन ने गोल स्कोर किया. सो इस टूर्नामेंट में चेल्सी और टोटनहम हॉटस्पर के बीच मैच होने वाला है. फिर यूएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच भी खेले जाएंगे. कायगात ओमोनिया भी 1-0 से आगे हैं. फिर लेच अगेंस्ट एजीएफ, लेच पोजनन 4-1. फिर शेवा अगेंस्ट विकिंगू, 2-1 से विकिंगू आगे. क्राइवा अगेंस्ट लेवस्की, 1-0 से लेवस्की की टीम आगे हैं. गोर्निक अगेंस्ट फेनेरबाचे 1-0 से आगे. रेड स्टार अगेंस्ट लाने, रेड स्टार 4-0 अहेड. स्लोवान इबेरिया एग्रीगेट अभी स्लोवान 2-0 से आगे हैं. आज ही यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के मैच भी खेले जाएंगे. डुगागिनी लुगानो 1-0 से आगे. कोपेनहेगन अगेंस्ट पोलिसिया 3-3 है अभी. और रैपिड वियना वर्सेस कोलोमा, ये 3-1 से रैपिड वियना आगे हैं. सो टोटनहम हॉटस्पर जो मैच मैंने कहा 1-1 दे वन ऑन पेनाल्टीज, राइट? तो पेनाल्टीज में ये लोग जीत गए. फ्रेंडली मैच भी आज काफ़ी खेले जाएंगे जैसे बोरुशिया डॉर्टमुंड की हार हुई सेरेज़ो टीम के खिलाफ. एथलेटिको मैड्रिड खेलेगा रेटाफे के खिलाफ. काफ़ी मैच आज और कल खेले जाएंगे फॉर द फ्रेंडलीज एंड फॉर यूरोपा लीग कॉन्फ्रेंस लीग चैम्पियंस लीग के लिए भी बहुत से मैच हैं फ्रेंडली मैचों पर. खासतौर पर वी आर फॉलोइंग द मेजर टीम्स, राइट? ना कुछ अभी मैं बार बार चेक कर रहा हूँ क्योंकि कभी भी मेडल टाली बदल सकता है और कोई नया खिलाड़ी साइन कर लेगा. एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्रिकेट फेस्टा जो होने वाला है बहुत जल्द. हमारी टीम
आपको जानकारियां देंगे ज्यादातर। और इंडियन क्रिकेट टीम प्रिपेयरिंग फॉर द श्रीलंका टूर।

0: ये टेस्ट क्रिकेट होगा जिसमें कुछ नए खिलाड़ियों को लाया गया है और कुछ वेटरन खिलाड़ियों को फिर से मौका दिया गया है. सो फॉलोइंग द एमबीसी 11 लाइव, अभी मैच बॉक्सिंग में और 5:10 के करीब बी देयर मैं वेक्लिया के लिए.
1: थैंक यू सो मच अरविंद.
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट.

0: तो चलिए जी चेक होता है स्टूडियो की गर्मी 4:51 हो चुके हैं। द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज आपके और हमारे बीच में बट ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था दैट विल बी हैविंग वन मोर गेम। जी हाँ दोस्तों, वन मोर गेम ऑन RM2 रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए प्ले विद RM2 एंड विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर्ड टू यू बाय द इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट। यम्मी यम्मी खाना खाओगे आप। सो फिलहाल के लिए आपको याद दिला दे आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इज बैक माय डियर विद एक्साइटमेंट फॉर इट्स व्यूअर्स जो है पार्टनरशिप में विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय म्योप MYOP एंड इट्स स्टार्टिंग 1 अगस्त से एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो है आत्मापू और वहां पे 6 टीम्स होने वाले हैं जो हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट कंटिनेंटल चीटास AMG पैंथर्स कैंपस अब्रॉड लायंस APP लियोपार्ड्स वन हेल्थ जगुआर्स एंड थॉमस कुक टाइगर्स। आप विजिट कर सकते हैं ग्राउंड को टू सपोर्ट योर टीम। मैचेस विल बी प्लेड ऑन सैटरडे आफ्टरनून एंड संडे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून एज वेल। फिलहाल के लिए पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल, आपको सही जवाब देना है बाय सेंडिंग मी द राइट आंसर ऑन 54991294 5 99 12 94। सेंड मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ, देन ओनली यू गोना बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम। तो चलिए जी, यू जस्ट हैव टू टेल मी द मूवी लगान। क्रिकेट की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स लगान मूवी जो है कौन से ईयर में रिलीज हुई थी, इन विच ईयर वॉज द मूवी लगान रिलीज। 5499124 सेंड मी द राइट आंसर इन विच ईयर द मूवी लगान वॉज रिलीज, 2001 या 2003।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।

0: I'm pretty much sure सिर्फ बेबी को ही नहीं बाबा को भी बेस बहुत ही पसंद है और इवन हमें भी बेस बहुत पसंद है and I know that you're liking the bass on our right here radio मस्ती. तो चलिए जी 4:55 हो चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. इट्स मी गणेश ऑन द माइक साथ देने के लिए. और जस्ट लाइक यू नो वी हैविंग सो मेनी गिव्स, सो मेनी कैडोज टू गिव अवे टू यू एंड आई नो दैट यू हैविंग अ ग्रेट टाइम. ऑफ कोर्स कैडो मिलता है तो किसको अच्छा नहीं लगता है. तो चलिए जी फिलहाल थोड़ी देर पहले हमने पूछा एक बहुत ही आसान सा सवाल. यस, रिगार्डिंग क्रिकेट पूछा गया था. द मूवी लगान कौन सी साल में, कौन से ईयर में रिलीज हुई थी, 2001 या 2003? और सभी लोगों ने सही जवाब दिया. एकदम सही जवाब, 2001 में द मूवी लगान वॉज रिलीज. और आज के लकी ड्रो में हमारा लकी विनर है हंसा फ्रॉम मोसलमा ब्लूप्रिंट जो है फ्रॉम अटायक. So congratulations to you, my beautiful lady Hansa. You are the lucky winner. You are winning a gift voucher offered to you by Indian Swad Restaurant, a voucher worth 500 rupees. So enjoy the good meal and keep on enjoying the good music. Always on our rhyme to Radio Masti. There will be someone calling you from the embassy to let you know wo aapke voucher ko hai. Post karenge. So thank you so, so much. Baki jitne bhi hamare listeners, aap logon ne participate kiya. Thank you so much for participating.
1: RM2 Radio Masti.

0: धोखा बिल्कुल नहीं देगी. यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. जहां दोस्तों, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही अरविंद जी आपको बता रहे थे अबाउट द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम. एक्चुअली उनकी जो बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल में इस समय मेविन क्लेयर जो है, जो हमारे इमोशन है, ही इज राइट नाउ ऑन द रिंग. तो चलिए लेट्स लिसन अ लिटिल बिट व्हाट इज हैपनिंग देयर.
1: Round two.
0: I guess all the Mauritians, we are having our fingers crossed and wishing him luck.
2: Second round then in this second quarter final in the men's 70 kilogram category. Precious Nettie once again winging that wild right hand, attempting to force a second consecutive stoppage victory and a place in the semi-finals. But Mervyn Clare has been very confident on the back foot, and you get the sense he even backs himself to take the heavier shots of Nettie because he's more than content to engage when he feels the need and when he feels the time is right.
3: Clumsy work there by

0: So referee has our boxers. We have the score totals, a unanimous decision. The winner in the blue corner from Mauritius, Mervyn Clair.
1: बिल्कुल जी, कितने गर्व की बात है कि मॉरिशस का मेडल आ ही गया. Mervyn Clair जो है, he did it right now. जी हाँ दोस्तों,
2: and adding to the tally of 13 medals at previous games in boxing for Mauritius, it's a certain bronze, and who knows, maybe better for Mervyn Clair.
1: तो चलिए जी, Mervyn Clair जो है उन्होंने करके दिखा दिया, फिर से एक बार मेडल लेकर ही आई हम लोगों के लिए. एंड इट्स जैसे बोलते हैं ना, गर्व की बात होती है, सो दैट्स सो नाइस. सो कंग्रेचुलेशंस टू Mervyn Clair. एंड यस, ऑन RMT रेडियो मस्ती जब भी आप सुनते हैं तो हमेशा हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आते हैं. एंड दिस टाइम वी मेड यू लीव दैट मोमेंट लाइव.
3: Depuis 17 jusqu'à 31 juillet, Vin profite d'un méga promo, l'ON Grand Sélection produit pour Oulakaz. Jusqu'à 50% discount, l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et collage, prix là, flash net, promo là, extra. Métrique, une enseigne du groupe KRMG. Aujourd'hui, c'est les derniers tirages du loto et du loto plus du mois de juillet. Respirez! Parce que le jackpot du loto est estimé à 32 millions de roupies et celui du loto plus est à environ 34 millions de roupies. Le conseil sérénité du loto, inutile d'accélérer. Le jackpot, lui, ne récompense pas les plus rapides. Chaque petit geste aujourd'hui fait une grande différence demain. Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
4: RM2 Radio Musti.

0: बिल्कुल जी, कहीं पे भी नहीं रुकना है, लेकिन ऑल राइट रेडियो मस्ती सुनते रहना है विद द गुड म्यूजिक। हम हैं गिनीशा जो बड़े प्यार से बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं ऑन ऑल राइट रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 5:29। फिलहाल के लिए सम लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स।
1: Traffic update.
0: For those who are driving, drive carefully. और हेलो जितने भी ड्राइवर्स हैं हमारा साथ दे रहे हैं, आपको हमारा वेरी गुड आफ्टरनून। ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है और पीक आवर शुरू हो चुका है 4:30 से। तो अगर आप कैपिटल से नॉर्थ या साउथ की तरफ निकल रहे हैं तो तैयार रहिए हैवी ट्रैफिक के लिए। जी हाँ, नॉर्थ बाउंड तेहूश फ्लाईओवर पार पर वो जो ट्रैफिक है स्लो मूविंग है और व्हीकल्स बम्पर टू बम्पर क्रॉल कर रहे हैं। और साउथ बाउंड जो है रेजुई से सैन जॉन तक और फिनिक्स की तरफ ट्रैफिक मूव तो कर रहा है लेकिन बहुत ही स्लो पेस पर, जैसे कि आपको पता है हर आफ्टरनून का तो यही सीन होता है। एंड इफ यू आर गोइंग टू हिट वेदर रोड, वहां पर भी हम देख सकते हैं स्लो मूविंग ट्रैफिक काफी लंबा है और इसीलिए एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम हमेशा लेकर निकल जाइए। कैटोबोन और रोजिल में हमेशा की तरह हैवी कंजेशन है और एबन मोटरवे भी इस वक्त फुली जाम है। और हमारी छोटी सी एडवाइस है हमेशा की तरह, अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेट रूट्स यूज करें, अननेसेसरी लेन चेंजेस से बचें और सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस में

0: टेन करें वाइल ड्राइविंग और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए. पेशेंस रखें, सीट बेल्ट लगा लीजिए और सेफ ड्राइव कीजिए. हम आपको ट्रैफिक अपडेट हमेशा देते रहेंगे और अगर आपके पास कोई ट्रैफिक लेकर रिलेटेड कोई आपके पास मैसेजेस हैं किसी हमारे जो लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए, सो येस यू कैन सेंड इट टू मी ऑन 5499-1294 पर. ड्राइव सेफली.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: FM2
1: Radio Musti.
2: Poule. Avec les Wonderful Days de Chantefrais, vous n'allez pas en croire vos yeux. Du 25 au 29 juillet, profitez de notre combo pack de 800 grammes avec des morceaux de blanc, de hanche, d'aile et de pilon de poulet pour seulement 154 roupies. C'est ça les Wonderful Days de Chantefrais.
3: Eh oui, Zisco de Chantefrais, Kina Chantefrais.
4: Un produit made in Maurice.
0: RM2
1: Radio Musty.
5: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
6: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
7: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: your musti. Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: फैशन टिप्स लेकर फिर से आ गई हूँ मैं. सो विंटर का सीजन है दोस्तों, तो स्टाइल और कंफर्ट दोनों का परफेक्ट कॉम्बो बनाइए. जी हाँ, कभी कभी दिन में जब धूप निकल रही है तो गर्मी शुरू हो जाती है दिन में, लेकिन रात को इतनी ठंड हो जाती है जस्ट लाइक लास्ट नाइट. तो इस सीजन बेगे या बीनी हैट्स दोनों ही ट्रेंड में हैं, और अगर आप क्लासी और एलिगेंट लुक चाहते हैं तो एक स्टाइलिश बेगे चूज कर लीजिए, और अगर कैजुअल या स्पोर्टी वाइब पसंद है आपको तो कोजी भी नहीं आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है. तो बिल्कुल कंफर्ट दोनों का परफेक्ट कॉम्बो बना लीजिए, और न्यूट्रल शेड्स जैसा जो ब्लैक है, बेज है, ग्रे है या क्रीम है हर आउटफिट के साथ इजीली मैच हो जाते हैं. थोड़ा पॉप ऑफ कलर भी चाहिए तो बर्गंडी, फॉरेस्ट ग्रीन एंड नेवी ब्लू ट्राई कर लीजिए. इट्स गोना बी वेरी नाइस, इट विल लुक सो सो नाइस. और याद रखिए हमेशा कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट एक्सेसरी माय डियर. तो वार्म रहिए, स्टाइलिश रहिए, और विंटर अपना फैशन गेम स्ट्रॉन्ग रखिए, एंड हमें फॉलो कीजिए ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती.
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.

0: बिल्कुल दिल से बॉलीवुड लेकर आते हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड गाने जो सीधे दिल पर जो अकेले लिखे जाते हैं और प्रेजेंट द लवली वॉइसेस इन द लवली वॉइस ऑफ नेहा कक्कर आप लोगों के लिए द मनाली ट्रांस तो जी हाँ दोस्तों और फिलहाल के लिए आई हैव गॉट यू योर डेडिकेशंस ऑन 5491994 पर अगला गाना फॉर यू अर्शद एंड दैट्स स्पेशली फ्रॉम रेबेका की तरफ से एंड वी डू हैव ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे ललिता जीतन के लिए और वो बोलते हैं जॉगिंग कर रहे हैं और प्रोग्राम जो है एकदम सुपर्ब है एंजॉय कर रहे हैं दैट्स सो स्वीट ऑफ यू सभी के लिए फ्रॉम वीना जॉकी सर जो बेलवी मोहल के रहने वाली हैं आपकी परिवार के लिए दोस्तों के लिए रेडियो मस्ती के लिए दैट्स सो स्वीट थैंक यू सो मच एंड चलिए जी वी हैव द नेक्स्ट वन गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोस जो साथ दे रहे हैं एंड आई वांट टू रेडियो मस्ती एंड इफ यू आर स्टिल एट वर्क हियर वी गो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू बोन कोराज टू यू माय डियर और अगर आप पुराने गाने के शौकीन हो Alisha Chennai ki awaaz ke diwane ho so how can you miss that I'm going to make you go back down memory lane to enjoy this lovely lovely track to chaliye ji filhal ke liye ye khoobsurat sa gana specially aapke liye on
1: RM2 radio masti

0: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में आना। 92 रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। और फिलहाल के लिए थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे 6 बजे की समाचार, और उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल बी बैक विद सम गुड गुड म्यूजिक फॉर यू ऑन 92 रेडियो मस्ती।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती। चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 पीएम।
2: RM2 रेडियो मस्ती।
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
2: Radio Musti.
4: North, South,
2: 103.5.
4: East, West,
2: 96.4.
4: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

0: सबसे पहले आज की सुर्खियां नॉन डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के लिए पानी और सीवरेज सेवाओं की दरें बढ़ेंगी सरकार का कहना है कि इस राशि से जल व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा और सीडब्ल्यूए में नए योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी विजन 2050 के तहत मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी ब्लू इकोनॉमी और लाइफ साइंसेज जैसे सेक्टरों के सहारे वर्ष 2050 तक अर्थव्यवस्था को 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है एमसीसीआई में कंपनियों के बीच एआई के उपयोग पर राष्ट्रीय सर्वे शुरू इसके आधार पर ट्रेनिंग और नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके मॉरिशस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में 22% की बढ़ोतरी पहली तिमाही में निवेश बढ़कर 5.9 बिलियन रुपए पहुंचा जिसमें सबसे बड़ा योगदान रियल एस्टेट सेक्टर का रहा देशभर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर सम्मान व्यक्त किया जापान के क्यूशू द्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप अब तक 13 लोगों की मौत 100 से अधिक लोग घायल बताई जाती है पानी और सीवरेज सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले नॉन डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को जल्द ही ज्यादा शुल्क देना होगा शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में नए योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया जाएगा
1: ये वृद्धि सेंट्रल वाटर अथॉरिटी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गैर घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगी इन उपभोक्ताओं के लिए नए नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे जिनमें मुख्य रूप से व्यापारी और ऐसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं जो प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी की खपत करते हैं CWA के बिल में 10% से 25% तक की वृद्धि की जाएगी वहीं स्मार्ट सिटीज और इंटीग्रेटेड रिजोर्ट स्कीम्स के लिए ये बढ़ोतरी लगभग 75% होगी CWA के अनुसार इस वृद्धि से मानव संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी
2: Nous prenons une tarification graduelle. Auparavant, c'était flat, donc c'était N prix par mètre cube. Aujourd'hui, plus de consommer, plus de pour pénaliser. Nous avons un manque d'environ plus de 400 personnes. Vous imaginez, c'est énorme. Si Moutina a une rentrée d'argent, Moutina a une situation financière raisonnable, donc ça permet de nous faire recruter.

0: financement. Donc, là, moi, salue un petit peu l'initiative du gouvernement qui peut donner CWR la possibilité pour faire ce que nous devons faire.
1: इस घोषणा ने व्यापारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। एक हेयर और ब्यूटी सैलून की संचालिका का कहना है कि अतिरिक्त वित्तीय भार उनके लिए काफी कठिन होगा।
2: Nous pouvons bien faire avec, nous pouvons bien voir justement avec la clientèle, parce que voilà, tous les jours nous servent de l'eau.
1: सामौते स्थित अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में प्रतिदिन लगभग 50,000 क्यूबिक मीटर अपशिष्ट जल का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप शोधन किया जाता है। WME के अनुसार नई शुल्क व्यवस्था से उसके बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।
3: Bonne station d'épuration de la WMA se traite de l'eau à différents niveaux. Donc, nous avons un niveau primaire, secondaire, tertiaire. Et il est bon nous dire aussi que la station qui traite au niveau tertiaire, nous avons un service à l'eau usée qui est traité là, par exemple pour arroser la canne à sucre ou bien même pour un terrain de golf. Nous améliorons le service, donc ça va une augmentation là, nous permet d'améliorer un petit peu le service qui nous peut donner le public en général. Après 4 ans, qui nous paye une augmentation pour tarif wastewater. Donc, comment on connaît, ben, le coût hein, d'opération pour traiter ça de l'eau usée, il coûte très cher. Et on a environ 5000 clients hein, qui sont connectés avec réseau wastewater. Donc, ça, ben, client-là, c'est ben, business, ben, la banque, ben, clinique. Donc, à 5000 clients-là, il y a à peu près 80% qui nous ben, clients qui ont augmentation pas pour dépasser 15%.
1: शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में वृद्धि की घोषणा की गई थी जो अगले महीने से लागू होगी।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने अपना पहला मेडल पक्का कर लिया है। ये उपलब्धि मुक्केबाज मर्विन क्लेयर ने हासिल की है। क्वार्टर फाइनल में उसने गाना के प्रिशियस अकाई नेटी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ मर्विन क्लेयर ने कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो सुनिश्चित कर ही लिया है। ये मुकाबला NBC 11 पर सीधा प्रसारित किया गया। अब नजर होगी सेमीफाइनल पर जहां मर्विन क्लेयर स्वर्ण पदक की दौड़ को आगे बढ़ाने उतरेंगे। कई दशकों तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष व्यापारिक सुविधाओं, कम टैक्स व्यवस्था और सस्ते श्रम बल पर आधारित रही, लेकिन समय के साथ ये लाभ धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए विजन 2050 के तहत एक नए आर्थिक मॉडल पर जोर दिया जा रहा है। इसमें ब्लू इकोनॉमी और लाइफ साइंसेज एवं फार्मास्यूटिकल जैसे सभी अभी कम विकसित सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार $15.2 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन तक पहुंचाया जाए। मॉरिशस में कंपनियों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। इस अध्ययन के जरिए ये जाना जाएगा कि स्थानीय कंपनियां AI का कितना और किस तरह उपयोग कर रही है। अध्ययन के नतीजों के आधार पर ट्रेनिंग और सहयोग की नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। इस सर्वे का आरंभ पोर्टली में ICT मंत्री अविनाश राम तोहल की मौजूदगी में किया गया। सुनिए रिपोर्ट।
5: मॉरिशस की कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का स्तर जानने और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए एक सर्वे शुरू किया गया है। मॉरिशस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MCCI की ये पहल देश की राष्ट्रीय AI रणनीति और बजट में घोषित उपायों के तहत की जा रही है। MCCI के अध्यक्ष पैट्रिस मारी कहते हैं, हर एक उद्योग को एक जरूरत होती है उत्पादकता, ऑटोमेशन या कारगरता की। हम जानना चाहते हैं कि डिजिटल बदलाव के सफर में वे कहां स्थित हैं। इससे हमें बाधाओं को जानने में मदद मिलेगी और हम कहां मदद दे सकते हैं, कहां सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, संचालन और सुरक्षा में हम किस तरह योगदान दे सकते हैं। इस सर्वे की शुरुआत के अवसर पर मौजूद ICT मंत्री अविनाश राम तोहल ने इस पहल का स्वागत किया। वे कहते हैं, संचालन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम इसका स्तर नहीं जान सकते। ये एक पहला कदम है AI को अपनाने में समझने के लिए। जितना उद्योग AI का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्पादकता बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। कई नीतियाँ तैयार की गई है। अगर उद्योग इसे और बढ़ाना

0: करना चाहते हैं या सुधार चाहते हैं, तब हम इस पर विचार करेंगे। उत्तम और कपफॉर मॉरिशस के सहयोग से किए जा रहे इस अध्ययन में ये भी देखा जाएगा कि स्थानीय कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से रूप सबसे उपयुक्त हैं। इस सर्वे में लगभग 450 कंपनियां शामिल होंगी।
1: मॉरिशस में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी

0: प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बढ़कर 5.9 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 4.8 बिलियन रुपए था। सबसे अधिक निवेश रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख निवेशक देशों में शामिल। वहीं मॉरिशस की ओर से विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा आज देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। ये दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उनके मार्गदर्शन को नमन करने का अवसर माना जाता है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। वहीं श्रद्धालु अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। विधि मासीपुरन की विशेष रिपोर्ट पेश है।
1: गुरु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वो जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रकट करता है, और पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा। इसलिए गुरु पूर्णिमा उस गुरु के सम्मान में हिंदू महीने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो छात्र का मार्गदर्शन करते हैं, उनके संदेहों को दूर करते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा रात के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार गुरु अपने उपदेशों और उदाहरण द्वारा शिष्य के जीवन को आलोकित करते हैं। ये विचार एक प्रसिद्ध संस्कृत प्रार्थना में व्यक्त किया गया है।

0: ये प्रार्थना गुरु को तीन महान दिव्य कार्यों, सृष्टि करना, रक्षा करना और रूपांतरित करना के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार गुरु वे हैं जो ज्ञान को जन्म देता है, उसकी रक्षा करता है और अज्ञान का नाश करता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये महान गुरु महर्षि वेदव्यास को समर्पित हैं, जिन्होंने वेदों के मंत्रों का संकलन किया और मानवता के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की।
1: एक शिष्य के जीवन में जब तक शिष्य की चेतना होती है, तब तक गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आविर्भाव सूक्ष्म रूप से शिष्य के जीवन में होता है, चाहे स्मृति के रूप में, ध्यान के रूप में, बोध के रूप में, ज्ञान के रूप में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब से दया भई सदगुरु की सूरत इन अंत चली, अर्थात जब से सदगुरु की एक शिष्य पर कृपा होती है तो उनकी सूरति इधर उधर भटकती नहीं है, अर्थात सूरति स्थिर रहती है।
0: गुरु पूर्णिमा उन सभी शिक्षकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो विश्वास, सम्मान, अनुशासन और शिक्षक तथा छात्र दोनों की जिम्मेदारी पर आधारित गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का संचार करते हैं।
2: आज के युग में देखा जाए तो दो प्रकार के गुरु हैं मेरी दृष्टि में, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक मार्ग में छात्रों को, चेलों को अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि शिक्षा गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं। किस प्रकार का ज्ञान? केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, अपने अनुभव को भी भली भांति गुरु बांटते हैं। सद्गुरु कबीर का कथन है, जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निरंत, अंधे अंधा कूप ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अर्थात यदि गुरु ही ज्ञानी न हो तो वो चेले का सही अर्थ में मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, और परिणाम क्या होगा, दोनों जा करके कुएं में पड़ जाएंगे। इसीलिए किसी को भी जब हम गुरु बनाते हैं, दीक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए कि वो गुरु एकदम ज्ञानी होना चाहिए, उसमें दया का भाव होना चाहिए।
0: प्रार्थनाएं, पवित्र मंत्रों का पाठ, ध्यान सत्र और आध्यात्मिक भाषण इस दिन को विशेष बनाते हैं, जहां गुरुओं द्वारा सिखाई गई मूल्यों सत्य, आत्मसंयम, दया, सम्मान, साहस और पारस्परिक सहायता को जीवन में उतारने पर जोर दिया।

0: जाता है। माता पिता को अक्सर बच्चे का पहला गुरु माना जाता है, क्योंकि वे उसे बोलना, चलना, अच्छे और बुरे में अंतर करना तथा समाज में रहना सिखाते हैं।
1: पहला हमने के गुरु है हमने के माँ बाप, जो हमने के शिक्षा प्रदान कर लग, जो हमने के मार्गदर्शन कर लग, उन लोग के एगो रिमेसिमा करेला सर अपन गुरु के हम आज है माध्यम से अपन गुरु के बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमरा आज इतना सक्षम कर लग कि हम आज सकते हैं तू लोग के सामने बचाए।
0: इसके बाद शिक्षक आते हैं जो उसके ज्ञान और क्षमताओं का विकास करते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते हैं जो उसे खुद को बेहतर ढंग से जानने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। कोई अनुभवी व्यक्ति, सलाहकार, बुजुर्ग या जीवन की कोई परीक्षा भी शिक्षा का स्रोत बन सकती है।
2: और श्रावणी मास के दौरान इन दिनों भारत में कांवर यात्रा निकाली जा रही है, सुनिए ये विशेष रिपोर्ट।
3: सावन के पवित्र महीने के आगमन के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में तैयारियां मजबूत की जा रही हैं, जहां हजारों कांवरिया का स्वागत किया जाएगा। विशेष ध्यान सुरक्षा, यातायात और भीड़ के संचालन तथा तीर्थ यात्रा सुविधाओं पर दिया जा रहा है। प्रयागराज में तैयारियां तेजी से चल रही हैं, सड़कों पर मरम्मत कार्य किए गए हैं, सैनिटेशन सुविधाएं स्थापित की गई हैं और महत्वपूर्ण जगहों पर घेरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की मदद और सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस अफसरों को तैनात किया जा रहा है।
4: जो प्रमुख हमारा मार्ग है वाराणसी मार्ग, उस पर घाट से लेके जो हमारा बॉर्डर है वहाँ तक पूरा रूट पर एक जो लेन है वो कावड़ यात्रियों के लिए रिजर्व की गई है, जिसपे कावड़ियों का मूवमेंट रहेगा।
3: गंगा घाट और अन्य तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा तेज की गई है, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें तैनात हैं। साथ ही कई मेडिकल कैंप्स बिठाए गए हैं, जहां 24 घंटे टीमें कार्यरत रहेंगी। कांवरिया लोगों के लिए कांवर रखने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जहां आवश्यक सुविधाएं होंगी, जैसे आराम करने के लिए बिस्तर, पीने का पानी, शौचालय तथा सुरक्षा। इस बीच अयोध्या में भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, इसलिए सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में भी हर की पौड़ी के घाट पर सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सावन महीने के दौरान कांवर यात्रा उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है।
2: SBM Holdings Limited के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल क्लोद निकोला गुफले को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि आंतरिक जांच के बाद उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की गई है। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक मुनि सिंह जाना नायकनी को ग्रुप के कार्यवाहक CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक वन ने अल्जाइमर और डिमेंशिया एसोसिएशन को अपना सहयोग दिया है। ये पहल बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों में अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इनके मरीजों, उनके परिवारों तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करना है। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित क्यूशू द्वीप पर मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस आपदा में कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। क्यूमामोटो क्षेत्र में एक शॉपिंग सेंटर और कागज के कारखाने में दबी कई लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, सुनिए।
5: जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आज सुबह भी बचाव अभियान जारी रहा। कल रात आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल रहे हैं। भूकंप पश्चात 100 झटके भी महसूस किए गए हैं। बचाव कर्मी खास रूप से उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो एक शॉपिंग सेंटर के मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.1 तीव्रता का ये भूकंप मंगलवार को क्यूशू द्वीप के कुमामोटो क्षेत्र में आया। इसके कारण भारी तबाही मची, कई घर ढह गए, पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा कई स्थानों पर आग लग गई। 9,000 से अधिक लोगों ने रात केंद्रों में बिताई, वहीं हजारों घरों में बिजली

0: बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित रही। बचाव कार्यों और नुकसान का आकलन करने के लिए लगभग 3,600 जापानी सैनिकों के साथ कई विमानों को भी तैनात किया गया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उसे जल्द ही वापस ले लिया गया। क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी प्रकार की असामान्यता की सूची नहीं मिली है।
1: और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रही अस्थिर बादलों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज रात को और कल सवेरे के दौरान देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। ऊंचाइयों और पूर्व में शाम को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 20 से 22 अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:51 पर, सूर्योदय 6:40 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। टेक्निकी सहायक हमारे साथ रहे लुडोविक, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड प्लैन दे रोश में 82 ईयर्स ओल्ड के 82 साल के रामदत्त सुमाका की मृत्यु हो गई है। रामदत्त सुमाका की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी बेटी दोमन सुमाका के मकान प्लैन दे रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। जागृति रोड 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की जानकी गोकुला की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पुनसोमी, लोग उन्हें सोनी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज शाम को 4 बजे उठाई गई। रिवायों रोड क्रेव क्यों में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड के सुनील गोविंद की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें स्वामी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हें के मकान क्रेव क्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेव क्यों ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सिंगारों स्ट्रीट व्यू ग्रांपो में 32 साल की 32 ईयर्स ओल्ड की साक्षा गुंडोरी चितामन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पिता राजेश गुंडोरी के मकान व्यू ग्रांपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कौरोश ओयतामी 83 ईयर्स ओल्ड की अचामा तुमिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम खुना येरुकुनंदू, लोग उन्हें देवी उडनी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान ओयता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM2 Radio Musty.
2: Poulele, ce 17e anniversaire. Dulé Omega 1 kg. Aste 10 sachets, gain un spaghetti en cadeau. Pouzis, 399 roupies. Saucisse, qu'est-ce qu'il nous glue? 340 grammes, 37 roupies, 95. Tweet, ice cream, 1.8 litres, à 204 roupies, 95.
3: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentin Amor.

हमारे पूरे मस्ती परिवार की तरफ से lots of love for you my dear and to all lovely couples celebrating out their wedding anniversaries I just want to wish you a magical wedding anniversary it's your day today तो चलिए जी इसी बात पे हो जाए खूबसूरत सा गाना आपके नाम

भाई देखिए प्यार में जीने मरने की कसम सब लोग खाते हैं, लेकिन अगर आपको प्यार में जीना है तो आपको कसम खाना है कि बस आप जीने

0: के बारे में बात करेंगे, मरने के बारे में किसी भी तरीके से आपको बात नहीं करना है, बस आप अच्छी तरीके से अपने इस प्यार को सही ट्रैक पर लेकर आइए और देखिए जिंदगी कैसे अच्छी तरीके से और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है। चलिए वादे के हिसाब से हम भी एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। एक बार फिर से आप सभी का हम दिल से स्वागत कर रहे हैं, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वैसे वार्म से याद आया, नॉर्थ रीजन में काफ़ी गर्मी है और क्लाइमेट चेंज के चलते आपके यहाँ मौसम कैसा है, डू लेट अस नो। कहीं कहीं इलाके पर तो दिन के दौरान गर्मी होती है और रात को ठंड होती है, तो आपके यहाँ मौसम कैसा है और क्लाइमेट कैसा है हम ज़रूर जानना चाहेंगे ऑन 5499-1294। एंड यहाँ पर 7:06 हो चुके हैं। टू ऑल दोज लिसनिंग टू अस फ्रॉम अब्रोड, आपको भी स्पेशल हेलो हाय। एंड डोंट फॉरगेट, आपको भी अपना मैसेज ड्रॉप इन करना है क्योंकि हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने इस मिड वीक मस्ती को स्पेंड कर रहे हैं। वैसे नाम तो ही है मिड वीक मस्ती, तो चलिए मस्ती भरे गाने तो साथ में कुछ कूल सूदिंग म्यूजिक गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आई जस्ट होप दैट आप हर एक पल का पूरा पूरा लुत्फ उठाएंगे और खुशी के साथ आप झूमेंगे और साथ में बहुत ही प्यार से साथ में गुनगुनाने भी वाले हैं। एंड प्रॉमिस करते हैं कि एंटरटेन करेंगे आपको टिल 9 PM। ऐसे ऐसे गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, सुनने के बाद आपको थोड़ा सा और प्यार हो जाएगा और आपका दिल थोड़ा और जोर से धड़क भी जाएगा। सो चलिए, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। डोंट फॉरगेट, दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर और यही वाली फीलिंग आनी चाहिए जब आप प्यार करते हैं। कल हम प्यार के बारे में बात कर रहे थे और शायद आपको याद होगा कि हमने इसी सिलसिले में कहा था कि होम इज़ नॉट अ प्लेस, होम इज़ समवन जिनको मिलने के बाद आप बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम तो बिल्कुल सेफ आपके साथ महसूस करते हैं एंड वी फील रियली लव्ड एंड स्पेशल जब भी आपके मैसेजेस आते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की ओर। हेलो दिव्या जी, प्रणाम और नमस्ते। आपको भी प्रणाम और नमस्ते जी, होप यू आर फाइन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच आशीष एंड आई जस्ट होप यू आर डूइंग गुड एज वेल। ओपन यूनिवर्सिटी से आप कनेक्टेड हैं और सभी दोस्तों के लिए भी आप एक हेलो हाई बोलना चाहते हैं उनको, स्पेशली टू किशन, विराज, विकी, सन, नीलेश, नाइको, अश्विन और रंजीता। एक गीत बजा सकते हैं कोई भी आपकी पसंद का, रोमांटिक इफ पॉसिबल। बिल्कुल, ये तो रोमांटिक शो का ही, रोमांटिक गानों का ही शो है एंड बस यहाँ पर जितना हो सके हम रोमांटिक गीतों को समेटने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा और प्यार हो जाए। वेल आपने हमें कहा है कि ओहो आपने कहा था इफ 7:30 को आई कैन रीड योर मैसेज। हमने तो थोड़ा एडवांस में पढ़ लिया। आई जस्ट होप

0: इट्स ओके फॉर यू आशीष जी एंड आई होप यू आर लिसनिंग राइट नाउ. तो चलिए साथ में यहाँ पर किसी ने हमें बहुत ही प्यार से मैसेज भेजा है फ्रॉम अब्रोड. हाय रेडियो मस्ती टीम, एंजॉइंग योर शो, लिसनिंग टू माय फेवरेट रेडियो स्टेशन. थैंक यू सो मच सिमला जी हमारा साथ देने के लिए. और आप यूके से बोल रही हैं, 29 degrees, इट्स रियली हॉट आउट देयर. और आपका मैसेज, आपके मैसेज के साथ साथ आपने हमें एक पिक्चर भी भेजा है, बाहर का नज़ारा देखने को मिल गया यूके में और हम बहुत ही खुश हुए. बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू टीम. थैंक यू सो मच सिमला जी, आपको भी बेस्ट विशेज एंड बॉन कुराज इस तपती धूप में. आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन क्या करें. जितने भी सारे लोग अब्रोड में हैं, हमारी मॉरिशन भाई बहनें जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप लोग बाहर जाते हैं, अपना एक ज़िंदगी बसर करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं. इट्स नॉट ईजी अपने घर से दूर, शायद माँ बाप से दूर, फैमिली से दूर, लेकिन हम आपके साथ हैं टू मेक यू फील होम. साथ में यहाँ पर आप कहते हैं, गुड इवनिंग, प्लीज़ डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई टू प्रिंसेस रिवांश एंड रेयांश, वाइफ वशिनी मोमवेदा फ्रॉम विजय पुलुदू ऑफ हाईलैंड्स. थैंक यू टू यू कि आप इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं. और साथ में वी हैव अंतिश कनेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड एज यूजुअल. अंतिश तो हमेशा फैमिली मेम्बर की तरह मैसेज भेज ही लेते हैं और इनके मैसेज भेजने से हम थोड़ा सा और मुस्कुराते हैं और कभी इतनी फनी बातें करते हैं कि मैं अकेली यहाँ पर हंसती हूँ और शायद कोई आ जाए तो उनको लगेगा कि अकेले हंसना बुरी बात होती है, लेकिन क्या करें क्या करें. सो अंतिश थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. और आप स्विट्जरलैंड से कनेक्टेड हैं और वैसे राज और सिमरन के बारे में आपने बात की है और साथ में आपने ये भी कहा है कि जा जिले अपनी ज़िंदगी, तो इससे क्यों ना एक गाना आपके लिए हम बजाएं. एंड ऑल्सो गोज आउट टू ऑल द फैंस ऑफ शाहरुख खान जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं. और वाट कुड बी बेटर दैन प्लेइंग दिस गाना जो उस मूवी से लिया गया है जहाँ की शूटिंग स्विट्जरलैंड में ही की गई थी.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

RM2 रेडियो मस्ती। वैसे वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना टेकन अप फ्रॉम द मूवी तड़प, अरिजीत सिंह की आवाज में, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। इसीलिए हमेशा हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में भी बात करते रहते हैं। कहते हैं ना कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास, अगर आपके आपका मन खुद खाली है तो आप दूसरों को क्या प्यार दे पाएंगे। इसीलिए खुद से प्यार करना बहुत ही जरूरी है। बिलीव मी, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स जस्ट दैट कभी कभी खुद को टाइम देना, कभी कभी खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी आप अकेले में ये सोचो कि हम दूसरों से इतना प्यार करते हैं तो खुद से हम कितना प्यार करेंगे, इसके बारे में जरूर सोचेगा और हमें बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है और क्या ओपिनियन है। इट्स ऑलरेडी 7:30 PM, दिव्या का साथी न्यू इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। कुछ प्यार भरी बातें, कुछ प्यार के नगमे आप लोगों के लिए हम चलाते रहेंगे रात्रि के 9 बजे तक। फिलहाल के लिए ये गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली अदिति और विनय के लिए। गोइंग बैक होम फ्रॉम वर्क आफ्टर अ टायरिंग डे, सो आपको हैव अ सेफ म्यूजिकल राइड विद रेडियो मस्ती। बस आपको दिल से शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। वैसे जहाँ पर हम सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, और आई गेस आप दोनों उनमें से एक हैं। सो चलिए अदिति एंड विनय, ये गाना खास तौर से आप दोनों के नाम। चलिए आई जस्ट होप इस गाने को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा और प्यार हो जाएगा। वैसे इस शो का मकसद तो यही है आपके दिलों को थोड़ा जोर से धड़काने के लिए। आई जस्ट होप कि इस गाने को सुनने के बाद आपका जो हार्ट बीट है वो थोड़ा और भी फास्ट हो जाएगा।

0: Well, it's already 7:46. चलिए एक बार फिर से आपको हम याद दिला देते हैं दैट दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज. एंड चलिए, अगर आप भी किसी पे जान छिड़कते हैं या फिर हमारे गीतों को सुनने के बाद आपको किसी की याद आ रही है, तो बेशक उनके नाम प्यारा सा पैगाम ऑन 5499-1294. बेशक प्यार का इजहार, प्यार को जताना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और वैसे कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन अगर आप अल्फाजों में भी प्यार को बयां करेंगे और एक्शन के जरिए भी अपना प्यार दिखाएंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा और आपका प्यार और इसका जो इसकी जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी. सो चलिए, यहाँ पर आप कहते हैं, हाई डियर, वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना एज यूजुअल फॉर योर फ्रेंड नीतू ऑफ पाल्मा का ट्रिबोन. उनके बर्थडे के लिए हमने उनको ऑलरेडी विश भी कर लिया था. एंड चलिए, एक बार फिर से आप उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड all the very best for the years ahead. Hope she has a wonderful celebration with her family. And chaliye, yahan par Rajiv of St. Pierre connected hain hamare saath. Thank you so much. Aur aapke yahan kya chal raha hai? Aapne khana kha liya, bartan maanj rahe hain, kitchen saaf kar rahe hain, ya fir kal ke liye kuch log advance mein khana bhi bana lete hain, kyunki early morning shayad aap nikal jate hain kaam par jane ke liye, to aapko time nahi milta hai khana banane ke liye. Bachon ka tiffin taiyar karna baki hai, to के लिए कुछ लाइट प्रिपेयर कर रहे हैं कल के लिए. सो आपको बॉन कुराज इन द किचन.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: आरएम2
1: रेडियो मस्ती.

भाई कहने को तो फिल्मी डायलॉग ही लगते हैं, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका गुजारा अपने चाहने वाले के बिना तो कर ही नहीं पाते हैं और उनके बिना ज़िंदगी सोच ही नहीं पाते हैं। बच कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं उनको ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए, ना कि उनको ज़िंदगी ही बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे आपकी ज़िंदगी उलट पुलट भी हो सकती है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू गिव सम लव फॉर योर सेल्फ, कुछ उनके लिए, कुछ अपने माँ बाप के लिए। मतलब कहने का मतलब यही है कि प्यार को बैलेंस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई जस्ट होप कि आपको के ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिले। एंड कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, एंड आपके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपको वो मनचाहा प्यार और वो मनचाहा इंसान मिल ही जाए। वेल रात्रि के 8:06 हो चुके हैं, बात करते करते गाने सुनाते सुनाते ये टाइम कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चला, बट फॉर श्योर और कुछ टाइम बचा है हमारा और आपका साथ रहेगा टिल 9 PM। और कहने को तो बस ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम बचा है, लेकिन पलक झपकते ही ये वक्त भी निकल जाएगा। सो चलिए, यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक मैसेज आया है, गुड इवनिंग रेडियो मस्ती, कुड यू प्लीज़ डेडिकेट द सॉन्ग तुझे देखा तो ये जाना सनम फॉर लवली हस्बैंड फ्रॉम हिज वाइफ प्रीति। वैसे दिलवाले दुल्हनिया का गाना एक तो हमने ऑलरेडी चला लिया है, अभी के लिए हम ट्राई करते हैं, बट वी डोंट प्रॉमिस।

0: लेकिन फॉर श्योर ये अगला गाना गुज आउट स्पेशली आपके नाम एंड क्योंकि आपने लता जी की आवाज़ में एक गाना मांगा है तो यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में एक ऐसा ही गाना मौजूद है. इट्स फ्रॉम द 90s एरा एंड आई एम जस्ट श्योर कि आप इस गाने को ज़रूर पसंद करेंगे.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Masti.

0: बिल्कुल दोस्तों, जादू है, नशा है, प्यार है और बस कुछ आपस के जज्बात हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपकी तरफ से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से कुछ अपने प्यार के अल्फाजों को हम तक पहुंचाएं। ऑन 5499 1294 8:20, अगर आप लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, बूको हाज विश करना चाहते हैं एंड इफ़ यू आर होम रिलैक्सिंग एंड बस हमारे गीत को सुनने के बाद आप थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं, तो चलिए जी, आप का हक बनता है कि आप घर वापस आकर थोड़ा सा रिलैक्स करें एंड कल बैक टू द डेली रूटीन। ऑलरेडी कल थर्सडे है एंड आई जस्ट होप कि आप धीरे धीरे करके इस वीक को ऐसे ही ख़त्म करें प्यार के साथ और कुछ खूबसूरत जज्बातों के साथ भी। एंड चलिए, खूबसूरत जज्बात तो तब उभर कर सामने आता है जब प्यार होता है और हम यही चाहते हैं कि हमारे गीतों को सुनने के बाद आपको थोड़ा और प्यार हो जाए।
1: RM2, Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: हम भी आपके साथ हैं और इस बात का सबूत देने के लिए तो खुद अरिजीत सिंह यहां पर आ चुके हैं आपको बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। देखिए गाने के जरिए भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, अल्फाज अगर आपके पास नहीं है तो गाने का आप गाने की मदद ले सकते हैं, क्योंकि कुछ गानों के जरिए ही दिल का हाल बयां किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये गाना तो हमने खास तौर से आप लोगों के लिए डेडिकेट किया हुआ है। वेल आपके मैसेजेस डेडिकेशन हम तक जरूर पहुंच रहे हैं एंड डू लेट अस नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड। कुछ आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे इस गाने के बाद।

0: ऑलराइट 8:45 हो चुके हैं यहां पर हमारी प्यारी सी अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लैक से हैं कहती हैं हाय दिव्या जी आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं थैंक यू सो मच उम्मीद है कि आप भी बहुत ही अच्छे से हैं खैरियत से हैं और नेक्स्ट गाना आपकी बहन शोभा के लिए अनुराधा लक्ष्मी एंड सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी अनीता जी एंड चलिए उम्मीद करते हैं कि एंड तक ऐसे ही आप लोग साथ देते रहेंगे एंड यहां पर आपने कहा है प्लीज़ डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर हस्बैंड फॉर फ्रॉम रुखसार और एक्चुअली आपने यहाँ पर एक गाना भी लिखा हुआ है ये उनका फेवरेट है तो चलिए कुछ ही देर में आपके लिए कुछ और गाने हम पेश करते रहेंगे फ्रॉम द 90s तो रुखसार के पति के लिए ये अगला गाना आपने पति का नाम नहीं लिखा कोई बात नहीं बट बहुत ही प्यार से आप दोनों के लिए ये अगला गाना
1: Evening Lounge
2: RM2
1: Radio Masti

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Well, it's already 8:56 and इसी के साथ दिव्या के जाने का टाइम आ चुका है. हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम 7 से लेकर 9 बजे के बीच. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब खैर.

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: हेलो हेलो हेलो, लेट नाइट ग्रूव्स आर्म टू पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप? सब सही ना? बस म्यूजिकल सफर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। जिंदगी में ड्रीम्स होने चाहिए, बड़े वाले, थोड़े क्रेजी वाले, जिनको लोग सुनने के बाद बोले सीरियसली, क्योंकि अगर ड्रीम ही छोटा है तो एक्साइटमेंट कहाँ से आएगी। तो अपनी डिजायर्स को दिल में जगह दीजिए और उन्हें अचीव करने का करेज रखिए। बस तो लेट द म्यूजिकल जर्नी

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कहीं हमारे लिसनर्स हैं जो सपनों की दुनिया में खोए हैं वैसे, इसलिए रोज एफर्ट करना ये असली चैलेंज। आप इंस्पायर कीजिए, प्लान कीजिए, फेल कीजिए, ठीक है, लेकिन प्लान को चेंज करके आगे बढ़ते रहिए, बट कीप मूविंग। जैसे मैंने कहा, हर अचीवमेंट के पीछे एक ऐसी स्टोरी होती है जो दुनिया को नजर नहीं आती। लेट नाइट्स, सैक्रिफाइसेस और काउंटलेस अटेम्प्ट्स, कभी आगे बढ़ जाना, कभी एक स्टेप पीछे, लेकिन आपकी स्ट्रगल है तो जिंदगी जारी है। आपका वक्त जरूर आएगा, बस आप अपने टाइम के लिए रेडी रहें, उसे क्रिएट करते रहें।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

जो कैसे करेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहिए, थोड़ा वॉक कीजिए और फ़ोन को भी कभी कभी रेस्ट दीजिए। नहीं, वक्त ऐसा है, ठीक है, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, आज नहीं तो कल आपकी ज़रूर चलेगी। अकल की करना ये सब ज़रूरी है। अपने आप को भी वही केयर दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं, बिकॉज सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं, स्मार्ट है।

जितना बड़ा इंसान बनते जाइए उतना ही हम्बल रहना सीखिए, क्योंकि सक्सेस आपको ऊपर ले जा सकती है लेकिन ह्यूमिलिटी आपको लोगों के दिल में रखती है। अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड होइए एब्सोल्युटली, पर दूसरों को नीचे दिखाकर नहीं, उन्हें साथ लेकर आगे बढ़िए। आखिर में लोग आपकी कार नहीं आपका कैरेक्टर याद रखते हैं। सो स्टे ग्राउंडेड और दिल से कनेक्टेड रहिए। RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।

भाई जरूरी है कि आप जिंदगी के किसी भी रास्ते में हैं, परिस्थिति में हैं, सिचुएशन में हैं, आपके साथ कुछ लोग होंगे जो आपका साथ देते आए हैं। हाँ, वैसे भी कहते हैं कि कोई भी बड़ी अचीवमेंट सोलो नहीं होती, यानी कि खुद आपने सब कुछ नहीं किया। नहीं, सच मानिए, आपकी मेहनत जरूर है, लेकिन पीछे आपका परिवार कोई तो है जिसने आपका ध्यान रखा, आपको वक्त दिया, आप में वो कॉन्फिडेंस दिखाया है कि नहीं। एक कलीग जो लेट नाइट तक काम करता है, या फिर एक फ्रेंड जो सपोर्ट करता है, एक फैमिली मेंबर जो आप में बिलीव करता है, कभी उन लोगों को थैंक यू बोलना ये जरूरी है। सक्सेस का असली मजा तभी है जब आप सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सो टुनाइट अप्रिशिएट द टीम, बड़ी हो या छोटी, बिकॉज टुगेदर वी कैन गो मच फर्दर।

भाई जिंदगी में शांति सुकून खुशियां रखने के लिए मिलियन डॉलर बैंक बैलेंस जरूरी नहीं, कभी गरम गरम चाय, फेवरेट सॉन्ग और किसी अपने की एक कॉल काफी होती है। हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में सर्च करते रहते हैं, जब प्रमोशन मिलेगी, जब खुश होंगे, जब हॉलिडे होगा तब खुश होंगे। अरे बस आज भी एक दिन था ना, आज की हैप्पीनेस उन सभी मोमेंट्स को याद कीजिए और उन पर खुश होना मत भूलिए। एंजॉय द लिटिल थिंग्स बिकॉज वही है जो है असली में द बिग थिंग्स।

देखिए साहब, डर तो सबको लगता है, बस डिफरेंस इतना ही है कि कुछ लोग डर के बाद भी एक्शन लेते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। परफेक्ट मोमेंट अक्सर आता ही नहीं, जो आपके हिसाब से हो बनाना पड़ता है। फेयर को बोलो तू मेरे साथ चल, मैं फिर भी आगे बढ़ता जाऊंगा। आज एक छोटा सा ब्रेव स्टेप लीजिए, हो सकता है कल वही स्टेप आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात बन जाए। द टर्निंग पॉइंट।

कैसे होता है ना कि कभी कभी आपके हाथ से वो बात निकल जाती है, चाहे कोई बिजनेस डील हो या फिर जैसा आपने सोचा हो वो ना हुआ हो, या फिर आपके इमोशंस, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं, लेकिन अपना रिएक्शन कंट्रोल करना ये तो पॉसिबल है। प्रॉब्लम आई, डीप ब्रेथ और फिर सॉल्यूशन मोड ऑन। क्या कर सकते हैं? नेगेटिव थॉट्स को परमानेंट एड्रेस मत दीजिए, नहीं तो सर में आके बैठ जाएंगे। उन्हें गेस्ट की तरह आने दीजिए, क्योंकि आएंगे, और जाने भी दीजिए। लाइफ में सनशाइन और रेन दोनों होंगे, बस अम्ब्रेला लेकर चलना ये सीख लें। और हाँ, पॉजिटिव रहिए लेकिन प्रैक्टिकल भी। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बेस्ट है, जैसे आरएम2 पर गाने।

एक दिन में 24 hours, एंड जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कुछ होते हैं जो साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और कुछ होते हैं जो रास्ते में ही छूट जाते हैं। लेकिन फैमिली और ट्रू रिलेशनशिप, अरे साहब, इसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब लाइफ डिफिकल्ट होती है। इसलिए अपनों के लिए वक्त निकाली, सिर्फ फेस्टिवल्स पर नहीं, ऑर्डिनरी डेज पर भी। एक कॉल, एक मैसेज, कितना आसान हो गया ना। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? खाली पूछना कैसे हो, या फिर कब मिल रहे हैं। रिलेशनशिप्स को अटेंशन चाहिए, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। पानी दीजिए, केयर कीजिए, फिर देखिए कितनी ब्यूटीफुल ग्रोथ होती है।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं, जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
2: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

अच्छा, हमें से काफी लोग होते हैं जो एक डायरी मेंटेन करते हैं कि टू डू लिस्ट या फिर विश लिस्ट। डिजायर सिर्फ विश लिस्ट में लिखने से ड्रीम्स रियलिटी नहीं बनते, उसके साथ चाहिए डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और थोड़ा सा पेशेंस। आपको जो चाहिए उसके लिए आज क्या कर सकते हैं, बस उस पर फोकस कीजिए। वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। और जब लोग बोलें मुश्किल है तो स्माइल करके बोलिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। कीप गोइंग, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू।

अच्छा, वो बॉलीवुड में गाना है ना कि मुड़ के ना देख मुड़ के, आज रात एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिए आप कितना आगे आ चुके हैं। नहीं लिटरली नहीं करना, लेकिन बस ये सोचना है कि जो चीजें कभी इम्पॉसिबल लगती थी आज वो आपके साथ है। रियलिटी में इस जर्नी में जिसने आपका साथ दिया उन्हें दिल से थैंक यू कहिए, और जहां पॉसिबल हो किसी और की जर्नी का भी हिस्सा बनिए। किसी को ऊपर उठाना आपको कभी छोटा नहीं बनाता। द मोर काइंडनेस यू गिव द रिचर योर हार्ट बिकम्स।

So beautiful listeners, 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला. नहीं, थोड़े से मिनट बाकी हैं, लेकिन इससे पहले कि आज का दिन खत्म हो जाए, एक बात दिल में जरूर रखना, नेवर गिव अप. आपका ड्रीम कितना भी बड़ा हो, आपकी जर्नी कितनी भी टफ हो, होप को जिंदा रखिए. कल एक नया दिन है, एक नई अपॉर्चुनिटी है और एक नई बिगनिंग है. तो आंखों में ड्रीम्स, दिल में होप और चेहरे पर स्माइल लेकर आज गुड नाइट जरूर कह रहा हूँ, लेकिन फिर से मुलाकात होगी. योर बेस्ट डेज आर स्टिल अहेड, ये सोचकर मुस्कुराते हुए अगले दिन को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार. और म्यूजिक का हमारे साथ हमेशा 24/7 RM2 पर. मैं चाहूंगा इजाजत, जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिए.